0: जो देते हैं वही पाते हैं। अंग्रेजी में आपने कई बार सुना होगा, यू रीप व्हाट यू सो और व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट। यह एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमें सिखाता है कि हमारे द्वारा दिए गए विचार, भावनाएं और कर्म ही हमें वापस मिलते हैं। जब हम दूसरों के प्रति सकारात्मकता और प्रेम दिखाते हैं तो हमें भी वही वापस मिलता है। यह हमें समझने में मदद करता है कि हमारे विचार और कर्मों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जब हम अच्छे विचारों और कर्मों को अपनाते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं।
1: नमस्कार, सुप्रभात, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, आज आप बने हुए हैं मेरे साथ यानी आपकी रेडियो साथी गीचिक कनिक के साथ। दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली प्रसारण सभा। आज सन 2024 की अगस्त महीने की 11 तारीख है और दिन है मंगलवार। तो चलिए दोस्तों, आज के इस हसीन दिन की शुरुआत करते हैं अरुण एफएम के साथ, जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोताओं, आज के प्रभातकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता पीबी ड्योरी। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अनेकों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और अब इस शुभकामना के साथ कि आज का आपका दिन बहुत ही मंगल

7:15 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। 7:35 पर प्रसारित होगा तागिन बोली में समाचार। कार्यक्रम सदाबहार आप सुन पाएंगे 7:40 पर। 8 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभाग 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, और 8:30 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी सिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज।

कार्यक्रम हेलो ईटानगर आप सुन पाएंगे 8:40 पर। 9 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। 9:10 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम फिल्मी कब।

0: 10 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। 10:10 पर प्रसारित होगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। 11 बजे आप एक बार फिर से सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तो दोस्तों, ये थी हमारी सेज सफर में पेश होने वाली कार्यक्रमों की रूपरेखा। और अब से कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देशभर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। नवीश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता

नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जैम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देशभर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान दिया चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। एफआईएच हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गालो बोली में समाचार। गालो श्रोताओं के आगे की कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज तथा DRM 666 किलो हर्ट्ज पर। आपको बता दूं, आपने ट्यून इन किया हुआ है FM बैंड के 103.1 मेगा हर्ट्ज पर। जी दोस्तों, इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है कार्यक्रम सुबह सवेरे का।

सुप्रभात दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुबह सवेले। दोस्तों, एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और खुद को थोड़ा और बेहतर महसूस करने की एक छोटी सी कोशिश के साथ हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। दोस्तों, सुबह का वक्त वैसे भी बहुत खास होता है। दिन की शुरुआत अगर थोड़ी पॉजिटिविटी और अच्छी आदतों के साथ हो तो पूरा दिन भी बेहतर गुजरता है। तो आज की सुबह सबसे पहले अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। अगर आप घर पर हैं तो आराम से बैठ जाइए या खड़े हो जाइए, कंधों को रिलैक्स कीजिए और एक गहरी सांस लें।

दोस्तों, रोजमर्रा की भागदौड़ में हम अक्सर अपने शरीर और मन को समय देना भूल जाते हैं। इसलिए सुबह सवेरे कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं हेल्थ, एक्सरसाइज, योगा और हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ सिंपल और यूजफुल बातें। तो चलिए दोस्तों, आज की सुबह की शुरुआत करते हैं कुछ सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के साथ। दोस्तों, पहली एक्सरसाइज है नेक और शोल्डर स्ट्रेच। जी दोस्तों, सीधे खड़े हो जाइए या कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए और अब धीरे से अपनी गर्दन को राइट साइड की तरफ

झुकाइए, कुछ सेकेंड्स रुकिए और फिर वापस सेंटर में आ जाइए। और दोस्तों आप इसी तरह गर्दन को लेफ्ट साइड की तरफ झुकाइए और फिर धीरे से सेंटर में ले आइए। और दोस्तों आप दोनों शोल्डर्स को धीरे से ऊपर उठाइए, कुछ सेकेंड्स होल्ड कीजिए और रिलैक्स कीजिए। दोस्तों इस मूवमेंट को कुछ बार कंफर्टेबली रिपीट कर सकते हैं आप। ये सिंपल स्ट्रेचिंग नेक और शोल्डर्स में होने वाली स्टिफनेस को कम करने और बॉडी को रिलैक्स फील करने में मदद कर सकती है। चलिए दोस्तों अब करते हैं दूसरी एक्सरसाइज, और दूसरा एक्सरसाइज है साइड स्ट्रेचिंग। दोस्तों सीधे खड़े हो जाइए और दोनों पैरों के बीच हल्का सा गैप रखिए। अब अपने राइट हैंड ऊपर उठाइए और बॉडी को धीरे से लेफ्ट साइड की तरफ बेंड कीजिए। और दोस्तों बस उतना ही बेंड करें जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो और कुछ सेकेंड्स रुकिए। और अब धीरे से वापस सेंटर में आ जाइए। और दोस्तों अब लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए और बॉडी को राइट साइड की तरह स्ट्रेच कीजिए, कुछ सेकेंड्स रुकिए और फिर धीरे से वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए।

श्रोताओं, एक्सरसाइज करते वक्त एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अपने बॉडी को फोर्स ना करें। हर मूवमेंट धीरे और कंफर्टेबली करें। अगर किसी एक्सरसाइज के दौरान पेन या कंफर्ट हो तो एक्सरसाइज रोक देना बेहतर है। और दोस्तों, एक्सरसाइज के साथ हाइड्रेशन को भी इग्नोर मत कीजिए। सुबह से ही अपने दिन में पानी को इम्पोर्टेंस दीजिए। दिन भर रेगुलर इंटरवल्स पर पानी पीते रहिए, खासकर जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। हेल्दी रूटीन बनाने के लिए हमेशा बड़े चेंजेस की जरूरत नहीं होती। कभी कभी छोटी छोटी आदतें ही सबसे बड़ा डिफरेंस लाती है। और दोस्तों, खुद का ख्याल रखना सेल्फिश नहीं है, बल्कि एक हेल्दी और बैलेंस लाइफ की जरूरत है। तो आज अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी आदत के साथ कीजिए। थोड़ा वक्त अपने लिए, थोड़ी मूवमेंट अपने शरीर के लिए और थोड़ी पॉजिटिविटी अपने मन के लिए। इसी पॉजिटिव नोट के साथ सुबह सवेरे कार्यक्रम में अब वक्त है एक खूबसूरत गीत का।

चलिए दोस्तों, मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे खास सेगमेंट से, यानी आज का इतिहास। आइए दोस्तों, अब नजर डालते हैं 11 अगस्त से जुड़ी कुछ खास घटनाओं और उन शख्सियतों पर जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में खास पहचान बनाई है। 1924 में आज के दिन लालमणि मिश्रा का जन्म हुआ था। वो भारतीय सशस्त्र संगीत के प्रसिद्ध विद्वान, संगीतकार और शिक्षक थे। संगीत की कला के साथ साथ अपनी गहरी विद्वत्ता के लिए भी उन्हें खास तौर पर जाना जाता था। सन 1937 में आज ही के दिन मलयालम सिनेमा के मशहूर फिल्म मेकर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर जॉन अब्राहम का जन्म हुआ था। उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपने अलग और प्रयोगधर्मी अंदाज के लिए एक खास जगह बनाई थी। सन 1999 में आज के दिन यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में सदी का आखिरी पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया था। इस खगोलीय घटना को देखने के लिए दुनिया भर में लोगों के बीच खासा उत्साह था। सन 2000 में आज के दिन फिजी के विरोधी नेता जॉर्ज स्पेट के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने का फैसला लिया गया था। सन 2001 में आज के दिन नॉर्दर्न आयरलैंड असेंबली को भंग कर दिया गया था। साथ ही आयरिश विद्रोहियों को अपने हथियार छोड़ने और निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 2 हफ्तों का समय दिया गया था। सन 2007 में आज के दिन मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने थे।

2008 में आज के दिन गोदावरी पावर और इस्पेट ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ 1,570 करोड़ रुपए के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसी दौरान आरजे नायक को परसवर्णत रिटेल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। सन 2018 में आज के दिन भारतीय मूल के प्रसिद्ध इंग्लिश साहित्यकार वीएस नायपोल का निधन हुआ था। अपनी रचनाओं और साथिया के लिए दुनिया भर में पहचान बनाने वाले नायपोल को 2001 में नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, इतिहास के पन्नों से आज बस इतना ही और अब आइए रुख करते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों की ओर। द अरुणाचल टाइम्स की पहली हेडलाइन से, आसाम अरुणाचल बाउंड्री रो टर्न्स वायलेंट येट अगेन। आसाम अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद सोमवार को यहां लोअर सियांग जिले में हिंसक हो गया। नवीनतम जरब जिसमें कम से कम एक दर्जन घायल हो गए हैं, पापुमपरे जिले के तरासों में इसी तरह के सीमा विवाद के कुछ दिनों बाद हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार हिमे गांव से ही हुई जरब में कई लोग घायल हो गए। हिमे गांव मिकोक मोमले के गांव बूरा जीबी के एक पुलिस अधिकारी और हिमे के एक अन्य ग्रामीण के साथ आसाम के पड़ोसी गांव के लोगों द्वारा कथित तौर पर अपहरण किए जाने के बाद तनाव और बढ़ गया। द अरुणाचल टाइम्स की अगली हेडलाइन से, पीएलए डिनाइंग इंडियन फोर्सेस एक्सेस टू की पेट्रोलिंग पॉइंट्स इन ताक्सिंग पीपीए। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल पीपीए द्वारा प्रतिनायुक्त एक दतिया कोच समिति एफएफसी ने बताया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के सैनिकों ने अपर सुबनसिरी जिले के ताक्सिंग क्षेत्र में प्रमुख गश्त बिंदुओं तक भारतीय वालों की पहुंच से प्रभावी ढंग से इनकार कर दिया है और वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के साथ पारंपरिक भारतीय चराई और शिकार के मैदानों पर लगातार नियंत्रण का विस्तार कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और पीपीए के मुख्य सलाहकार कापा बेंगिया की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय समिति ने 10 जुलाई को ताक्सिंग के दौरा किया। अन्य सदस्यों में कालिंग जेरंग उपाध्यक्ष, सोरंग क्योकम सचिव और नाराजिमी सचिव शामिल थे। टीम ने स्थानीय नेताओं, बुजुर्गों और ताक्सिंग माजा और गेलिंग के बुद्धिजीवियों के साथ साथ क्षेत्र में तैनात वरिष्ठ रक्षा कर्मियों और जवानों के साथ विस्तारित बातचीत की। द अरुणाचल टाइम्स की अगली हेडलाइन से, आरजीओ ऑर्गेनाइजेस नशा मुक्त युवा पर विकसित भारत प्रोग्राम। राजीव गांधी विश्वविद्यालय आरजीओ ने सोमवार को केंद्रीय युवा मामलाओं और खेल मंत्रालय के विकास भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम के तत्वावधान में नशा मुक्त भारत के लिए विकास युवा कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन युवाओं को नशीली दवाओं से मुक्त जीवन शैली अपनाने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देने और विकास भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया गया था। तो दोस्तों, राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज बस इतना ही और अब आइए हर रोज की तरह कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट में अब आपको सुनवाते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे तागिन बोली में समाचार। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी अरुण FM 103.1 MHz के साथ।

दोस्तों, आज की सुबह को थोड़ा और सुहाना बनाने के लिए लेकर आए हैं आपका अपना कार्यक्रम सदाबहार। जो दोस्तों, जहां हर सुबह मिलती है मौसम की ताजा जानकारी, कुछ काम की बातें और संगीत की मधुर धुनों का साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सदाबहार में सुबह है आपकी और गीत है आपके पसंद के। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सुबह की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद अब वक्त है जानने का कि आज ईटानगर के मौसम का क्या हाल है। दोस्तों, इस वक्त ईटानगर में मौसम साफ और धूप भरा है और तापमान है 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि महसूस हो रहा है लगभग 33 डिग्री। और दोस्तों, आज दिन चढ़ने के साथ तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। फिलहाल बारिश की संभावना 0% है। हवा की रफ्तार करीब 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और वातावरण में नमी 82% दर्ज की गई है। वहीं हवा की गुणवत्ता की बात करें तो AQI 46 है, यानी हवा की क्वालिटी अच्छी है। तो दोस्तों, आज ईटानगर में सुबह से धूप का साथ रहेगा और दिन के दौरान गर्मी के एहसास बढ़ सकता है, इसलिए घर से बाहर निकलते वक्त पानी का ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, मौसम के हाल अब जान लिया, अब मौसम को और भी खूबसूरत बनाना है एक मधुर गीत के साथ। आइए सुनते हैं इस गीत को।

दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी शिलांग केंद्र से नोटिस न्यूज। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: बिजली बिल जीरो और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
4: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
3: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
5: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे

0: 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
2: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त चुनाव भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
3: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूँ, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने पिछले एडवाइजरी में भी सार्वजनिक महासभा के सामने कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
1: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोतो से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
4: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
5: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में

0: तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
2: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोरांबा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइनल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
1: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वही अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हॉर्मुज जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1,500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी, हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. Parliament passes taxation and other laws amendment bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman says digital payment system to remain free for consumers. Government notifies 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. Jharkhand student protest leader Devendra Nath Mahato hospitalized after his health deteriorates. BJP calls for Jharkhand Bandh today over lathi charge on students. At least 132 people killed following 7.4 magnitude earthquake in western Colombia. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan today. And India wins 17 medals, including 4 gold at Under 23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the Money Bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Since it is a money bill, Rajya Sabha can only make recommendations on its provisions and return it to the Lok Sabha, which may accept or reject those recommendations. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear that the legislation does not impose any tax on UPI and the digital payment system would remain free for consumers. The finance minister stated that the UPI-related amendment is only an enabling provision and does not itself impose any tax or transaction charge on users. Ms. Sitharaman also said that the government doesn't intend to impose any MDR charges on small merchants as they remain central to UPI's inclusive growth.
5: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
4: The government has notified 11 more international ports enabling foreign nationals holding e-visas to enter India through these designated points. The new additions include 9 land ports and 2 airports. With this, the total number of international ports facilitating entry of e-visa holders has risen to 88. A report.
6: The Home Ministry said the newly notified points include Bhopal and Tirupati airports and 9 land ports at Agartala, Atari, Daranga, Gede, Gojatanga, Haridaspur, Jaigaon, Dwaki and More. The Ministry said the move will further enhance the attractiveness and utility of the e-visa facility for international travellers. Around 95% of e-visa applications are processed in less than 72 hours. Introduced in 2014 for nationals of 43 countries, the e-visa facility has now been extended to citizens of 172 countries. It is currently available under 17 subcategories including tourist, business, medical, student, transit, cruise and mountaineering visas. The ministry said India now issues roughly 78% of its visas electronically. Ishani Yadav, Akashvani News, Delhi.
4: Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 and the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 for consideration and passing in the Lok Sabha today. Mr. Shah will move a motion for consideration of the bill seeking to alter the name of the state of Kerala. He will also move the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, which seeks to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. Rajya Sabha is scheduled to take up the Tribunals Reforms Bill 2026 for consideration and passing. Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal will move the bill. The bill aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. The legislation also proposes to establish a National Tribunals Commission. Jharkhand student protest leader Devendranath Mahato has been hospitalized after his health deteriorated while taking part in the student-led assembly march in Ranchi yesterday. More from our correspondent.
7: The assembly Girao, which continued for nearly 10 hours yesterday, saw protesters reaching the vicinity of gate number 1. Police used water cannons, tear gas and lathi charge to clear the area. Student protest leader Devendranath Mehto, who has been on a hunger strike for the past 9 days, was admitted to Ranchi Sadar Hospital after his health deteriorated during the assembly protest. Doctors are monitoring his condition and have placed him on oxygen support. The BJP has called for a statewide bans today, alleging excessive use of force against protesting students and reiterating its demand for a CBI inquiry into the alleged examination irregularities. Ranchi Deputy Commissioner Manjunath Bhajantri appealed to people to observe today's band peacefully and warned that appropriate action would be taken against anyone attempting to disturb law and order or incite violence. The administration has increased security arrangements at key locations in Ranchi and appealed to all sections of society to maintain peace and cooperate with the police and district administration. Mavish Rahman, Akashwani News.
4: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. At least 132 people were killed following a powerful 7.4 magnitude earthquake hits western Colombia yesterday. More than 570 others have been injured. According to U.S. Geological Survey, the epicenter of the quake was near San Jose del Palmar in the Choco region, about 400 kilometers west of the capital, Bogota. The quake damaged hundreds of buildings and trapped several people under debris. Rescue teams and local residents searched through the rubble for survivors. Colombian President Abraldo Despriella has declared an emergency to speed up funding for relief and recovery operations. The tremors were also felt in neighboring Ecuador and Panama, though no major damage was reported there. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange color warning for Himachal Pradesh and East Rajasthan for heavy to very heavy rainfall today. According to IMD, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Chhattisgarh, Gangetic West Bengal, Gujarat, Haryana, Chandigarh and Delhi will experience heavy rainfall at isolated places today. Rain has been occurring intermittently across most parts of Himachal Pradesh since last night. The Meteorological Centre Shimla has issued a warning of heavy rainfall in mainly 9 districts of the state during the next 24 hours. A report.
8: Continuous rainfall across Himachal Pradesh has affected normal life. As many as 106 roads remain blocked due to landslides at several places, while 66 transformers and 19 drinking water supply schemes have also been affected. Concerned departmental teams are working to restore these essential services at the earliest. Meanwhile, the Meteorological Center Shimla has issued an orange alert for rainfall in 3 districts, Kangra, Sirmaur and Mandi, during the next 24 hours. A yellow alert for heavy rainfall has also been issued for 6 other districts, Una, Bilaspur, Hamirpur, Chamba, Shimla and Solan. The administration has urged people to exercise caution in view of the possibility of heavy rainfall, stay away from rivers and streams and landslide prone areas and avoid unnecessary travel. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
4: In Uttar Pradesh, programs related to the Har Ghar Tiranga campaign will be organized with enthusiasm in all madrasas across the state. More from our correspondent.
0: Minister for Minority Welfare Danish Ansari has directed that students and youth studying in madrasas are to be in

हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम हेलो ईटानगर। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी छोटी बड़ी बातों को थोड़ा गौर से देखते हैं, कुछ नई जानकारी हासिल करते हैं और जानते हैं उन चीजों के बारे में जो हमारे आसपास तो होती है लेकिन शायद हमने कभी उनके बारे में गहराई से सोचा नहीं होता। तो दोस्तों, आज भी लेकर आए हैं हम एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। दोस्तों, आपने बांस तो जरूर देखा होगा लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सिंपल सा दिखने वाला पौधा हमारी जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है?

तो दोस्तों आइए आज के हेलो ईटानगर कार्यक्रम में हम बात करते हैं बांस यानी बैम्बू की। और दोस्तों जानते हैं इस पौधे की कुछ ऐसी

खास बातें जो शायद आपको भी हैरान कर दें। दोस्तों, बेंबू सिर्फ एक पौधा नहीं दोस्तों, बल्कि बेंबू को देखकर शायद पहला ख्याल आपका यही आता होगा कि बांस तो बांस है। लेकिन दोस्तों, नेचर की दुनिया में बेंबू की अपनी एक अलग ही कहानी है और बेंबू टेक्निकली ग्रास फैमिली का हिस्सा है, यानी ये ट्री नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ग्रास है। और दोस्तों, इसकी कई स्पीशीज बहुत तेजी से ग्रो कर सकती है, यानी जहां दूसरे प्लांट्स को ग्रो होने में काफी समय लग सकता है, वहीं कुछ बेंबू स्पीशीज बहुत फास्ट ग्रो के लिए फेमस है। इसी वजह से बेंबू को दुनिया के इंटरेस्टिंग और यूजफुल प्लांट्स में गिना जाता है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं बेंबू के एनवायरमेंटल रोल की। तो दोस्तों, बेंबू की स्ट्रोंग रूट सिस्टम सोइल को होल्ड करने में हेल्प कर सकती है, इसलिए कुछ एरियाज में ये सोइल इरोशन को कंट्रोल करने में यूजफुल हो सकता है। और जब बेंबू जैसे प्लांट्स ज्यादा ग्रीनरी क्रिएट करते हैं तो ये नेचुरल इकोसिस्टम का भी हिस्सा बनते हैं। दोस्तों, लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है आपको कि हर जगह सिर्फ बेंबू लगाने ही सॉल्यूशन नहीं है। लोकल एनवायरनमेंट और नेटिव प्लांट्स को समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, अब जरा अपनी डेली लाइफ की तरफ आइए तो बांस का यूज सिर्फ जंगल या गार्डन तक लिमिटेड नहीं है। कई जगहों पर बेंबू से बास्केट्स, मैट्स, फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम्स और हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं। ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शंस और डेली यूज आइटम्स में भी बेंबू का यूज बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेंबू से बनी चीजें सिर्फ यूजफुल ही नहीं बल्कि कई बार लोकल आर्ट और क्राफ्टमैनशिप को भी रिप्रेजेंट करती है। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश जैसे रीजन में ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और बेंबू कैन क्राफ्टमैनशिप का अपना खास इम्पोर्टेंट है। सोचिए जरा, एक सिंपल सा बेंबू और एक स्किल्ड आर्टिसन के हाथ में जाकर बास्केट बन सकता है, डेकोरेटिव आइटम बन सकता है या डेली यूज की कोई यूजफुल चीज। यानी दोस्तों, बेंबू सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्स नहीं बल्कि स्किल और क्रिएटिव का मीडियम भी बन जाता है। और इसी वजह से ट्रेडिशनल बेंबू क्राफ्ट्समैनशिप को प्रिजर्व करना भी इम्पोर्टेंट है।

और दोस्तों बेम्बू के यंग सूट्स को कई एशियन कुजिन्स में फूड के रूप में भी यूज किया जाता है। इंडिया के कुछ रीजन्स में भी बेम्बू सूट्स ट्रेडिशनल डिशेस का हिस्सा रहे हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि हर बेम्बू सूट ईटेबल नहीं है, इसलिए इसे फूड के रूप में यूज करने से पहले ईटेबल स्पीसीज और प्रॉपर प्रिपरेशन की जानकारी होना जरूरी है। और दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि घर के आसपास बेम्बू लगाया जाए तो बस प्लांट लगाना ही काफी नहीं है। सबसे पहले देखिए कि आपके पास कितनी जगह है। बेम्बू की कुछ वैरायटीज काफी एग्रेसिवली स्प्रेड कर सकती है, इसलिए सूटेबल स्पीसीज चूज करना और उसकी ग्रोथ को मैनेज करना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एरिया की सॉइल और क्लाइमेट का हिसाब से सूटेबल बेम्बू वैरायटी के बारे में लोकल नर्सरी या हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट से इन्फॉर्मेशन लेना बेटर रहेगा। दोस्तों बेम्बू की एक और इंटरेस्टिंग क्वालिटी है और वो है फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, तेज हवा आए तो बेम्बू बेंड कर सकती है और फिर अपनी पोजीशन में वापस आ सकते हैं। इसी वजह से बेम्बू को कई कल्चर्स में फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस से भी जोड़ा जाता है और शायद नेचर की तरफ से ये हमारे लिए एक सिंपल सा लेसन भी है कि हर सिचुएशन में टूट जाना जरूरी नहीं, बल्कि कभी कभी थोड़ा झुकना भी स्ट्रेंथ होता है। तो

तो बेम्बू को हम सिर्फ एक सिंपल प्लांट समझकर इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसके डिफरेंट यूजेस को देखते हैं तो समझ आता है कि एक ही प्लांट एनवायरनमेंट का हिस्सा है, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप का हिस्सा है, डेली लाइफ का हिस्सा है और कई कम्युनिटीज की कल्चर और लाइवलीहुड से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते वक्त उनका रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल यूज करना भी जरूरी है। तो दोस्तों, नेचर हमें बहुत कुछ देती है, जरूरत बस इतनी है कि हम उसकी चीजों की कदर करें और उनका समझदारी से इस्तेमाल करें। तो अगली बार जब आप किसी वांस के झुंड के पास से गुजरे तो बस एक पल के लिए रुक कर सोचिए, ये सिर्फ एक बांस ही नहीं, इसके पीछे नेचर, ट्रेडिशन, क्राफ्टमैनशिप और एक पूरी कहानी जुड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये छोटी सी जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और अगली बार बैम्बू को देखकर आप उसे थोड़ा अलग नजरिया से देखेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हेलो ईटानगर कार्यक्रम में आज बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास की नेचर को समझिए और उसकी खूबसूरती को अप्रिसिएट कीजिए। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त गिची कनिक और इसी के साथ ही चलिए दोस्तों, कार्यक्रम हेलो ईटानगर के अंत में आपको सुनवाते हैं कुछ प्यार भरे नगमों को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवा नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता और पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत की विनिर्माण व्यवस्था को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना तथा विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है। वित्त मंत्री ने कहा कि विधेयक में डिजिटल लेनदेन पर कोई कर या शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं लगाने का आश्वासन दिया। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 स्थल सीमा चौकियां और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी तथा अगरतला की स्थल सीमा चौकियां शामिल है। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में स्वीकृति दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल उचित गुणवत्ता, उचित मूल्य और उचित समय पर सही उत्पाद की खरीद दर्शाता है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10वें स्थापना दिवस पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि जेम के आने से पहले सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे सुशासन की कमी थी। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक ऑर्डर से 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सामान और सेवाओं की खरीद में सहायता मिली है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एनएसपी के माध्यम से पूरे देश के कृषि विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप जारी की। इसके अंतर्गत 6000 से अधिक विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। रांची में कल प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विधानसभा मार्च के दौरान झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो का तबियत बिगड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
1: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त चुनाव भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डेला एस्प्रियला ने आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में था। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्में गपशप, जहां एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हर वो खबर हम आप तक लेकर आते हैं जो बना दे आपके दिन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग। तो चलिए दोस्तों, बिना ज्यादा वक्त लिए शुरू करते हैं आज का फिल्मी गपशप, जहां बात होगी बॉलीवुड के स्टार्स, फिल्म्स और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लेटेस्ट अपडेट्स की। दोस्तों, सबसे पहली खबर आ रही है सिनेमा एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन यानी सिंटा से, जहां एसोसिएशन के अंदर एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। दोस्तों, सिंटा की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 8 इलेक्टेड मेंबर्स ने अपने पदों और एग्जीक्यूटिव कमेटी से इमीडिएट इफेक्ट से रेजिग्नेशन दे दिया है। इन मेंबर्स ने प्रेजेंट फंक्शनिंग के तरीके पर अपना कॉन्फिडेंस खोने की बात कही है और एसोसिएशन में फ्रेश इलेक्शंस कराने की डिमांड भी रखी है। दोस्तों, रिजाइन करने वाले मेंबर्स का एलिगेशंस है कि एसोसिएशन का फंक्शनिंग धीरे धीरे प्रेसिडेंट पूनम दिल्लो और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद्मिनी कोलापुरे, साथ ही एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ अन्य मेंबर्स के अराउंड कंसेंट्रेटेड हो रहे हैं। अब इस रेजिग्नेशन के बाद सिंटा के अंदर क्या डेवलपमेंट होते हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन की। तो दोस्तों, 83 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन अपने काम को लेकर उतने ही एक्टिव है। और दोस्तों, आपको बता दूं, एक्टर अक्सर अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू फैंस के साथ अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते हैं। और अपने लेटेस्ट पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने बताया कि वो लगातार 24 आवर्स शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी शेयर किया कि इस बिजी स्केड्यूल की वजह से कई बार उनका टाइम, स्लीप और फूड तक अफेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों, उनकी डेडिकेशन देखकर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि एक्टिंग के प्रति उनका पैशन आज भी बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है। आइए दोस्तों, अब एक इंटरेस्टिंग फिल्म अपडेट देते हैं आप सभी को। तो दोस्तों, सलमान खान ने कंफर्म कर दिया है कि हाईली एंटिसिपेटेड इंटरनेशनल एक्शन थ्रिलर 7 डॉग्स इंडिया में 21 अगस्त 2024 को थिएटर्स में रिलीज होगी। दोस्तों, फिल्म को अरब कंट्रीज में ऑलरेडी काफी अटेंशन मिल रहा है, खासकर अपने एक्शन सिक्वेंसेस और मैसिव स्टंट्स की वजह से। और दोस्तों, फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त स्पेशल अपीयरेंसेस में नजर आएंगे। तो एक्शन लवर्स के लिए 21 अगस्त का दिन डेफिनेटली एक्साइटिंग होने वाला है। और दोस्तों, अब बात करते हैं लकी अली की। दोस्तों, एक ऐसी आवाज जिसे सुनते ही जैसे पुरानी यादें खुद ब खुद लौट आती है। जी दोस्तों, चाहे वो ओ सनम हो, ना तुम जानो ना हम, सफरनामा या फिर एक पल का जीना, लकी अली के गाने एक अलग ही एहसास लेकर आते हैं। तो दोस्तों, लकी अली आज भी कंसर्ट्स के थ्रू अपने फैंस से कनेक्टेड है। हाल ही में एक कंसर्ट के दौरान वो इमोशनल भी हो गए और उनकी आवाज और उनके गानों से जुड़े ऑडियंस की यादें आज भी उतनी ही स्ट्रांग है। तो चलिए दोस्तों, अब बातें थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और सुनवाते हैं आपको लकी अली की आवाज में इन गीतों को।

0: वाह बहुत अच्छा
1: wow, brilliant, amazing, it's very nice.
0: Brilliant. ये म्यूजिक वीडियो तहलका मचा देगा. एंटरटेनमेंट की दुनिया में हम एक नया ट्रेंड सेट करने जा रहे हैं विक्रमादित्य.

दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फिल्मी गपशप में। उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एंटरटेनमेंट दुनिया की जुड़े कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें।

दोस्तों आइए अब बात करते हैं रणवीर सिंह और डॉन ट्री को लेकर चल रही विवाद की। जी दोस्तों, रणवीर सिंह के डॉन ट्री से एग्जिट होने के बाद इंडस्ट्री में काफी डिस्कशन हुआ। इस मामले में लीगल नोटिसेस और फिल्म बॉडीज के इन्वॉल्व होने की खबरें भी सामने आई है। रणवीर और फरहान अख्तर के बीच इस मैटर को लेकर डिसएग्रीमेंट बना हुआ है। अब दोस्तों, फरहान अख्तर ने एक रिसेंट इंटरेक्शन में रणवीर के एग्जिट को लेकर एक ऐसी बात कही जिसे रणवीर पर इनडायरेक्ट जेब का तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, फरहान ने रणवीर के एग्जिट को एक पैटर्न बताया है। अब फरहान के स्टेटमेंट पर रणवीर की तरफ से कोई रिएक्शन आता है या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और दोस्तों, अगला अपडेट एक ऐसी फिल्म का जो रिलीज के वक्त मिक्स रिएक्शंस का सामना करने के बाद आज कल्ट क्लासिक बन चुकी है। दोस्तों, करण जौहर की कभी अलविदा ना कहना को रिलीज हुए पूरे 20 साल हो गए हैं। 2006 में रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन और प्रीति जिंटा लीड रोल्स में नजर आए थे। फिल्म के 20 इयर्स कंप्लीट होने पर करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर फिल्म को लेकर अपने थॉट्स शेयर किए और बताया कि ऑडियंस की तरफ से उन्हें कुछ सरप्राइजिंग रिएक्शंस भी मिले। दोस्तों, वक्त के साथ फिल्म को लेकर ऑडियंस का पर्सपेक्टिव भी बदला और आज ये फिल्म

दोस्तों सस्वत द्विवेदी की ये शॉर्ट फिल्म बॉबी ब्यूटी पार्लर सिर्फ 20 मिनट में दो चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स इलू और मनु की कहानी सुनाती है। दोनों एक नेबरहुड ब्यूटी पार्लर में अपने साथ बिठाए आखिरी पलों का इंतजार कर रही है, क्योंकि उनकी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। तो दोस्तों फिल्म फ्रेंडशिप सेपरेशन और स्मॉल टाउन एस्पिरेशंस को एक इमोशनल कमिंग ऑफ एज स्टोरी के थ्रू प्रेजेंट करती है। और दोस्तों आइए अब आपको अपडेट देते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री से। जी हाँ दोस्तों, लिरिक्स मनोज मुंटासिर ने रिसेंटली एआर रहमान के एक पुराने स्टेटमेंट पर रिएक्शन दिया है। रहमान ने पहले अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से इंडस्ट्री में काम ना मिलने की बात कही थी। इस पर मनोज मुंटासिर ने उनके क्लेम को चैलेंज किया। मनोज ने सजेस्ट किया कि रहमान को काम मिलने में दिक्कत का रीजन उनके इंडस्ट्री रिलेशंस भी हो सकते हैं। उनके इस स्टेटमेंट के बाद एक बार फिर बॉलीवुड में ये डिस्कशन होता हुआ नजर आ रहा है कि इंडस्ट्री में प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स और अपॉर्चुनिटीज का कितना कनेक्शन है। तो दोस्तों ये थे ब्रेक के बाद का कुछ खास फिल्मी अपडेट्स, और आपको बता दूं आप हमारे साथ बने हुए हैं FM बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही आइए दोस्तों आपको सुनवाते हैं कुछ और प्यारे नगमों को।

दोस्तों आइए हम बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस ताबू की, जिनके पर्सनालिटी राइट्स को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर दिया है। कोर्ट ने ताबू को अनऑथराइज्ड यूज ऑफ हर नेम, इमेज, वॉइस, फोटोग्राफ्स और उनकी पर्सनालिटी से जुड़ी दूसरी चीजों से इंटरिम प्रोटेक्शन दी है। और दोस्तों इस प्रोटेक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक्स, फेस मॉर्फिंग और दूसरी डिजिटल टेक्नोलॉजीज के थ्रू उनकी आइडेंटिटी के मिसयूज को भी कवर किया गया है। और दोस्तों आज के डिजिटल जमाने में एआई का यूज जितना बढ़ रहा है, उतना ही सेलिब्रिटीज की इमेजेस और वॉइसेस के मिसयूज का रिस्क भी बढ़ रहा है। ऐसे में ताबू को मिली ये लीगल प्रोटेक्शन काफी इम्पोर्टेंट मानी जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं सिंगर गुरु रंधावा की। तो अपने लेटेस्ट सॉन्ग फाइन शिट को लेकर गुरु रंधावा को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग और बैकलैश का सामना करना पड़ा। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने सॉन्ग पर वुमेन, खासकर फीमेल कॉरपोरेट वर्कर्स को लेकर की गई पोर्ट्रेयल पर सवाल उठाए और इसे क्रिंज भी कहा है। और दोस्तों अब गुरु रंधावा ने इस बैकलैश पर खुद रिएक्शन दिया है। उन्होंने सॉन्ग के टाइटल को एस सिली लिटिल स्लैंग बताया और कंट्रोवर्सी को लेकर अपना साइड रखा। अब सोशल मीडिया पर चल रही इस डिस्कशन के बीच देखना होगा कि सॉन्ग आगे ऑडियंस के बीच किस तरह परफॉर्म करता है। और दोस्तों अब सीरियस अपडेट फिल्म इंडस्ट्री से। मुंबई पुलिस ने फिल्म मेकर शकील नूरानी को अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक एक 33 ईयर ओल्ड एस्पायरिंग एक्टर ने उनके खिलाफ रेप और थ्रेटनिंग के एलिगेशंस लगाए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नूरानी को महाबलेश्वर से अरेस्ट किया गया। ये एक ऑनगोइंग लीगल केस है और एलिगेशंस की सच्चाई का फैसला इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के थ्रू ही होगी। और दोस्तों अब थोड़ा मूड बदलते हैं और बात करते हैं उन फिल्मों की जो ऑडियंस का अटेंशन बना रही है। जी दोस्तों ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर सुपर हीरो फैंस के बीच स्पाइडरमैन ब्रैंड न्यू डे काफी चर्चा में है। टॉम हॉलैंड एक बार फिर पीटर पार्कर के रोल में नजर आ रहे हैं और फिल्म ने दुनिया भर में ऑडियंस का अटेंशन अट्रैक्ट किया है। इसके साथ ही द ओडिसी भी एक हाई प्रोफाइल सिनेमैटिक रिलीज के तौर पर ऑडियंस के बीच काफी बज क्रिएट कर रही है। दोस्तों बॉलीवुड की तरफ देखे तो दमाल 4 भी कॉमेडी लवर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। फिल्म में एक बार फिर कॉमेडी केओस और ट्रेजर हंट का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। और साइकोलॉजी थ्रिलर पसंद करने वालों के लिए बेबी डू डाई डू भी एक सस्पेंसफुल हिंदी फिल्म के तौर पर लिस्ट में है। और दोस्तों अगर आप आने वाले थिएटरिकल रिलीज पर नजर रख रहे हैं तो विश्वनाथ एंड सन्स भी अपकमिंग फिल्म्स में शामिल है, जिसमें सूर्या और ममिता बायजू नजर आएंगे। वही मगुदम विशाल स्टेरर एक्शन ड्रामा भी इसी वीक रिलीज होने वाली फिल्म्स में से एक है। तो अगर आप वीकेंड पर थिएटर जाकर कोई फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं, ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों ये थे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़े आज के कुछ खास अपडेट्स। आपको बता दूं आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप आनंद उठा रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप का। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही आज के फिल्मी गपशप का अपडेट्स बस यहीं तक रखते हैं और गीतों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको अगला गीत सुनवाते हैं अग्निपथ फिल्म से।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम फिल्मी गपशप यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आज का आपका सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। उसके तुरंत बाद हम फिर लौटेंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड के साथ। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल विधेयक पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
1: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
0: सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इनमें 9 स्थल सीमा चौकियां और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला की स्थल सीमा चौकियां शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदकों को 72 घंटे से भी कम समय में स्वीकृति दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम पोर्टल उचित गुणवत्ता, उचित मूल्य और उचित समय पर सही उत्पाद की खरीद दर्शाता है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10वें स्थापना दिवस पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि जेम के आने से पहले सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे सुशासन की कमी थी। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक ऑर्डर से 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सामान और सेवाओं की खरीद में सहायता मिली है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो को तबियत बिगड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर बताई है। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर श्री महतो तो 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की ज्यादती और लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
2: कांवड़ मेले के 12वें दिन कल 63,60,000 शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए। आज सावन शिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार में कांवड़ियों की भारी भीड़ है। मुख्य रूप से डाक कांवड़ियों की आवाजाही से शहर शिवमय हो गया है। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रमुख स्थान घाटों, कांवड़ मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। मौसम विभाग ने राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बहुत तेज वर्षा की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 and the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 for consideration and passing in the Lok Sabha today. Mr. Shah will move a motion for consideration of the bill seeking to alter the name of the state of Kerala. He will also move the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 which seeks to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962.

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। आपको बता दो, आपने ट्यून इन किया हुआ है एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपके पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड का।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।

दोस्तों, हर गीत अपने साथ एक एहसास लेकर आता है और जब वही गीत किसी अपने की फरमाइश पर मिले तो उसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो इसी खूबसूरत तो दोस्तों इसी खूबसूरत एहसास के साथ शुरू करते हैं आपका अपना कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड, जहां गीतों के जरिए जुड़ती है आपकी पसंद, आपकी यादें और आपके अपनों का नाम। दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किची कनिक और आज के इस सफर में हम सुनेंगे एक से बढ़कर एक गीत जो आपने भेजी है अपनी फरमाइश के साथ। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज के रेडियो ऑन डिमांड की पहली फरमाइश से। आपको बता दूं, ये फरमाइश भेजी है शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप ने, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। और आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म बरसात का खूबसूरत गीत दिल पागल दीवाना, जिसे अपनी आवाज दी है कुमार सानू ने। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं उनकी फरमाइश में इस गीत को।

दोस्तों आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर और आपको बता दूं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजा है सोनू परदान ने आसाम गोपुर से। आइए उनकी फरमाइश में सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों आपको बता दूं, आपने अभी इस गीत को सुना आरुषि परदान की फरमाइश में, जो हमें सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजे थे गोपुर आसाम से। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले फरमाइश की तरफ, क्योंकि रेडियो ऑन डिमांड में सिलसिला जारी है आपके पसंद और आपके अपनों के नाम। दोस्तों अगला गीत भेजा है जोगेंद्र रोंगपी, सोनाली इंगटीपी और दरोम किरी रोंगपी ने सारी हजान कार्बी अंगलोंग आसाम से, और इस गीत को उन्होंने डेडिकेट किया है अमल बाइकोन, रमेश पत्रो, रुन्नू पत्रो और आसाम और अरुणाचल के तमाम श्रोताओं के नाम। तो आसाम से आई इस प्यारी सी फरमाइश और खास डेडिकेशन को करते हैं पूरा। लीजिए अब सुनिए आपके पसंद का ये खूबसूरत गीत।
1: पापा के बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट, सारेगामा कारवां।

दोस्तों चलिए अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट लेते हैं और आपको बता दूं अगली फरमाइश भेजी है देवाशीष हजारिका ने माजुली आसाम से और उन्हें सुनना है जावेद अली और बंजेस्ता की आवाजों में फिल्म दे दनादन का एक बहुत ही खूबसूरत संगीत।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले फरमाइश की तरफ। और आपको बता दूं, ये फरमाइश भेजी है ज्योति सुरेन ने हेलम आसाम से। और ज्योति सुनना चाहती है फिल्म कत्ती बत्ती का एक खूबसूरत गीत। तो ज्योति जी, आपकी फरमाइश को करते हैं पूरा। लीजिए अब सुनिए फिल्म कत्ती बत्ती का ये प्यारा सा गीत सिर्फ आपके लिए।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वारी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले फरमाइश की तरफ। और ये फरमाइश भेजी है चाचा वांगसू ने तिराब से। और दोस्तों, चाचा वांगसू सुनना चाहते हैं फिल्म मेरे जीवन साथी का एक खूबसूरत गीत तुम बिन ना हम, जिसे अपनी आवाज दी है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। तो आइए दोस्तों, चाचा वांगसू आपकी इस प्यारी से फरमाइश को करते हैं पूरा, और लीजिए सुनिए इस गीत को।

चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। और आपको बता दूं, अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजा है हितेंद्र दास ने आसाम से। और उनकी फरमाइश में हम उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना प्ले कर रहे हैं।

दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप हमारे साथ बने हुए हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड पर, और आप इन गीतों का आनंद ले रहे हैं एफएम बैंड के 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही चलिए दोस्तों, समय ना गवाते हुए बढ़ते हैं अगले सॉन्ग रिक्वेस्ट की ओर। और आपको बता दूं, ये अगली जो फरमाइश है उसे भेजा है बिमल बसुमतारी ने, जुनेई मसाकी सपोरी डेमाजी आसाम से, और उन्होंने ये सॉन्ग डेडिकेट किया है बाइकॉन मुंडा, अमल बसुमतारी, रमेश माइनोराबा, अंजलि बसुमतारी, हितेंद्र दास, देवाशीष हजारिका और उन सभी दोस्तों के नाम जिनके नाम वो नहीं ले पाए हैं। आइए उनकी फरमाइश में सुनते हैं और एंजॉय करते हैं इस गीत को।

दोस्तों आइए रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम का आखिरी फरमाइश लेते हैं और आपको बता दूं ये लास्ट सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजा है आरव इतेंदर ने जो सिंके पार्क में रहते हैं और उन्हें सुनना है फिल्म बॉर्डर 2 का एक बहुत ही फेमस गीत।

तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज का हमारा रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारी पहली प्रसारण सभा भी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आप सबको बेहद पसंद आए होंगे। और आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 11 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। जाते जाते आपको बताना चाहेंगे कि आगे के कार्यक्रमों के सफर में यानी हमारी दूसरी प्रसारण सभा में आपके साथ जुड़ेगी आपकी अपनी आरजे पूरा दुनिया। और अब आप मुझे यानी आपकी रेडियो साथी गिची कनिक और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद तमाम सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी डोले तथा तकनीकी अभियंता पीबी द्योरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ दिन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरण के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवानियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता

0: ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का. स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ. उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है. इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है.
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया. झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है.
2: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए. उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया. पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है. रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है. महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची.
1: सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं. गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 स्थल सीमा चौकियां और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं. इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी तथा अगरतला के स्थल सीमा चौकियां शामिल हैं. भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में स्वीकृति दी जाती है. अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है. वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जैम पोर्टल उचित गुणवत्ता, उचित मूल्य और उचित समय पर सही उत्पाद की खरीद दर्शाता है. श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में जैम पोर्टल के 10वें स्थापना दिवस पर यह बात कही. उन्होंने कहा कि जैम के आने से पहले सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे सुशासन की कमी थी. श्री गोयल ने कहा कि जैम पोर्टल के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक ऑर्डर से 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सामान और सेवाओं की खरीद में सहायता मिली है. मौसम विभाग ने राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है. गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तक बहुत तेज बारिश की आशंका है. मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है. पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है. राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा. Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 and the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 for consideration and passing in the Lok Sabha today. Mr. Shah will move a motion for consideration of the bill seeking to alter the name of the state of Kerala. He will also move the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, which seeks to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. Rajya Sabha is scheduled to take up the Tribunals Reforms Bill 2026 for consideration and passing. Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal will move the bill. The NDA Parliamentary Party's weekly meeting Mangal Milan was held today at the Parliament House premises in New Delhi. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen and other NDA leaders waved Tiranga during the meeting Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the Money Bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Since it is a money bill, Rajya Sabha can only make recommendations.

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज की दूसरी प्रसारण सभा में। इससे पहले दोस्तों, पहले प्रसारण सभा में आप बने हुए थे आरजे कनिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आरजे कनिक के साथ आपका आज का सफर बहुत ही सुहाना और मनोरंजक रहा होगा। अब इस तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं और शुरू करते हैं आज की दूसरी प्रसारण सभा। और इस सफर में आज आपके साथ रहूंगी मैं, आपकी रेडियो साथी आरजे पूरा दुनिया। दोस्तों, इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा अजपीते में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता विश्वजीत। रोजाना की तरह आज भी सभा में हम आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें।

दोस्तों आज की दूसरी प्रसारण सभा की शुरुआत करें उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। अब से लेकर 11:30 तक आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्म लहर। 11:30 पर आप सुन पाएंगे पाश्चात्य संगीत पर आधारित वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम। 12:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 12:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गजल। आज के मेहमान कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 12:30 पर। 1:00 से लेकर 1:10 तक बारी बारी से आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचारों को। 1:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक, जहां हम आपको सुनाते हैं 60s, 70s और 80s के कुछ खूबसूरत गीतों को। 1:40 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। 2:00 से लेकर 2:30 तक आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। 2:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिट ऑफ 90s। न्यूज हेडलाइंस आप सुन पाएंगे 2:58 पर। शाम के 3:00 आप सुन पाएंगे मिशमिका मान श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:15 पर आप सुन पाएंगे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बोले दबदेत और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। वांचो श्रोताओं का समाचार आप सुन पाएंगे 3:40 पर। 3:45 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। इतु मिश में श्रोताओं का समाचार आप सुन पाएंगे ठीक 4:00। 4:05 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स और सभा के अंत में 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। तो दोस्तों ये थे अब से लेकर शाम के 4:20 तक प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों का रूपरेखा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

अब दोस्तों बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं आज के पहले कार्यक्रम के साथ। पहला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे फिल्म लहर, जहां हम आपको सुनाएंगे हिंदी सिनेमा के वो गीत जो कभी मुस्कान बन जाती है तो कभी यादों की धुन। हर धड़कन हर एहसास के लिए यहां कोई ना कोई गाना आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए ऐसे ही खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गाना आप सुन पाएंगे मिशन मजनू फिल्म से रपा जांडा। इस गीत को गाया है जुबिन नौटियाल ने।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी तनगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप बने हुए हमारे साथ कार्यक्रम फिल्मी लहर में। आइए कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं दोस्ताना फिल्म से जाने क्यों। इस गीत को गाया है KK और सलीम मर्चेंट ने।

0: इसी के साथ ही दोस्तों फिल्मी लहर कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुन पाएंगे पाश्चात्य संगीत पर आधारित वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम। तो दोस्तों अगले 30 मिनट के लिए हिंदी फिल्मी गानों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और एंजॉय करते हैं कुछ सूदिंग वेस्टर्न सॉन्ग्स।
1: Hello guys and welcome to the Western Music Program only on Akashvani Itanagar. I'm Sam, your host for the day. Sometimes the best playlists don't try too hard, they just move with you. So whether you're on the road, at work or just taking a break, let's keep things easy and let the music do what it does best. First up is Bruno Mars with a song that captures that feeling when you're standing at the edge of saying something, but you're not quite sure if you should. Sometimes all it takes is one little moment of courage. I Just Might by Bruno Mars.

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: हेलो गाइस एंड वेलकम।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
3: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल BSC की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल BSC की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार है, सदन चलना चाहिए।
2: श्री बिरला ने संसद में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा

0: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरण के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवानियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड विधानसभा के पास कल हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
1: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 घायल हो गए। आज तड़के पुणे बंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक से जा टकराई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Lok Sabha has been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the Lok Sabha assembled at 11 a.m., the Lok Sabha speaker tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protests. The opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah in this regard. Mr. Birla said Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju yesterday made it clear that Union Home Minister Amit Shah is ready to respond to the issues concerning students. He appealed to opposition members to cooperate in the smooth functioning of the House. The Speaker said, question hour is the most important time as it ensures government accountability. He said bringing placards and banners into the House is not in accordance with parliamentary decorum.
3: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार।
2: The speaker expressed concern over repeated disruptions, saying that he is personally saddened over the continuous disruption in the house. As the pandemonium continued, the speaker adjourned the house till 2 p.m. The proceedings of the Rajya Sabha have resumed after being adjourned till 12 p.m. The government has notified 11 more international ports, enabling e-visa holder foreigners to enter India.

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। और दोस्तों, अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम गजल। दोस्तों, गजलों की सबसे खास बात ये होती है कि ये दिल की उन बातों को भी बयां कर देती है जो अक्सर हम लफ्जों में कह नहीं पाते। नरम सुर, गहरी सैयारी और दिल को सुकून देने वाली आवाज के साथ गजल हर दौर में लोगों के दिल के करीब रही है। और जब एक खूबसूरत गजल महफिल सजती है तो लगता है जैसे वक्त भी थोड़ी देर के लिए थम सा गया हो।

और आज की गजल की महफिल में पहला पेशकश है पंकज उदास की आवाज में। दोस्तों, गजलों की दुनिया का एक अहम नाम है पंकज उदास। उनकी मीठी आवाज ने दर्द भरे जज्बात को एक नया अंदाज दिया। चिट्ठी आई है और आहिस्ता कीजिए बातें जैसे गजल आज भी लोगों के दिल को छू जाते हैं। उन्होंने गजलों को हर घर तक पहुंचाया और उनकी गायकी में एक सुकून, एक गहराई होती है जो हर बार सुनने पर नया लगता है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में एक हसीन गजल, सुनते हैं चांदी जैसा रंग है।

कभी कभी एक मुस्कुराहट के पीछे भी बहुत सारी कहानियां छुपी होती है। चेहरा मुस्कुरा रहा होता है लेकिन दिल के अंदर शायद कुछ और ही चल रहा होता है, और इसे एहसास को बहुत खूबसूरती से बयां करती है हमारी अगली गजल, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जगजीत सिंह की आवाज में फिल्म अर्थ की ये गजल सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो सीधा दिल तक पहुंचता है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आंखों में ये नमी क्यों है, और अगर दिल में कोई दर्द नहीं तो फिर उसे छुपाने की जरूरत क्यों है। इस गजल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें दर्द को बहुत शोर के साथ नहीं बल्कि बड़ी खामोशी से महसूस कराया गया है। जगजीत सिंह की आवाज, कैफी अजमी का गहरा अल्फाज और म्यूजिक का वो ठहराव सब मिलकर एक ऐसा एहसास पैदा करते हैं जिसे सुनते हुए हम अपनी ही कुछ पुरानी यादों में खो जाते हैं। तो चलिए कुछ पल के लिए अपनी बिजी लाइफ को पॉज करते हैं और महसूस करते हैं उस मुस्कुराहट के पीछे छुपे दर्द को। सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो।

0: गजलों की महफिल से आज बस इतना ही दोस्तों। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुन पाएंगे वीकली एंटरटेनमेंट कार्यक्रम आज के मेहमान। इस कार्यक्रम के तहत आज आप सुन पाएंगे वेद वार्ता, और आज का हमारा मेहमान है एंटरप्रेन्योर संगे सिंह और साक्षात्कारकर्ता है गोपाल राय।
1: ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 MHz है। प्रस्तुत है वीकली इंफोटेनमेंट कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हमारे मेहमान है अवार्ड विनिंग यंग एंड डायनामिक एंटरप्रेन्योर फ्रॉम बोमडिला वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, श्री सांगे सिरिंग। सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: अरुणाचल प्रदेश की ही नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वेल नोन एंटरप्रेन्योर है, जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई।
2: वेल, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में, मैंने जो मेरा कंपनी हॉलीडे स्काउट 2011 में शुरू किया था, जब मैं सेकंड ईयर में था दिल्ली में। हॉलीडे स्काउट इज अ टूरिज्म इंडस्ट्री एंड इट्स अ ट्रेवल कंपनी। लेकिन मैंने टूरिज्म, जब मैं क्लास 10 में था, तभी मैंने समझ लिया था कि टूरिज्म ही मेरे को करना है, क्योंकि मेरा जो अंकल है, आई मीन हिस्से में छिंग होंगे, उनका भी ट्रेवल कंपनी का नाम है हिमालयन हॉलीडेज। तो क्या होता था कि लाइक बैक व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड, तब हमारे घर में काफी सारा जो यूरोपियन हो गया या फिर अमेरिकन गेस्ट है, वो हमारे घर में आते थे टू हैव डिनर लंच एंड ऑल। तभी मतलब उनको देख के एक दिल में एक ख्वाहिश हुआ कि ये जो कर रहे मेरे को भी यही करना है। तो उसी के चलते फिर मैंने आस्ते आस्ते मेरे अंकल को बोला कि मुझे भी सिखाओ कि आप क्या कर रहे हो। तो क्लास 10 का जो वेकेशन है, वहीं से मेरा जो ये टूरिज्म का जो सिलसिला है ये वो शुरू हुआ था। और फिर आस्ते आस्ते जब दिल्ली गया, तो सभी को पता है कि दिल्ली में लाइफ इज क्वाइट इन पेस। तो उसी टाइम में मुझे कुछ करना था और मेरे को सिर्फ टूरिज्म ही आता था। तो 2011 में मैंने अपना ये हॉलीडे स्काउट जो कंपनी है, ये फेसबुक में एक पेज बनाया स्टार्टिंग इनिशियली, और वहीं से शुरुआत हुआ। तो क्या था कि 2011 में एंटायर नॉर्थ से कोई किसी का भी मतलब आपका फेसबुक में अपीयरेंस नहीं था, मतलब वो प्रेजेंट नहीं था, उनका पेज हो गया या फिर जो भी हो गया, आजकल तो काफी सारे हैं। तो हमारा जो कंपनी था वो इनिशियली मतलब फर्स्ट ऐसा कंपनी होगा जो फेसबुक में आया। तो आस्ते मतलब लोगों ने देखा, फिर वहीं से ही लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया और वहीं से ही हमारा जो ये टेक ऑफ शुरू हो गया था।
1: अब बात करते हैं, आपकी बचपन कहाँ बीती और कैसी रही?
2: मैंने क्लास 3, वैसे तो मैं बोमडिला का हूँ, क्लास 3 तक मैं बोमडिला में था। उसके बाद में फिर क्लास 4 से लेके 8 तक मैं दिराम में हॉस्टल में था, सेंट लोपन इंग्लिश स्कूल पे। उसके बाद फिर मैं 9, 10, 11 बोमडिला में था, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल पे। फिर क्लास 12 जो है मैंने तेजू में किया, लोहित डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके बाद फिर वहां से फॉर हायर एजुकेशन मैं दिल्ली गया, DU में अपना ग्रेजुएशन किया। फिर वहीं से ही ये टूरिज्म जो PG है वो मैंने YMCA से किया।
1: हम बात करेंगे फिर से हॉलीडे स्काउट की, ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है?
2: हॉलीडे स्काउट जो है ये हमारा ये ट्रेवल कंपनी है। हम लोग ज्यादातर जो टूर पैकेजेस हैं, टूर पैकेजेस में ही डील करते हैं। अभी जैसे इनबाउंड हो गया, इनबाउंड का मतलब होता है जैसे बाहर देश जो लोग आते हैं इंडिया में, उनको घुमाना। तो लेकिन हमारा जो USP है, जो हम स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट पे ही करते हैं, ओनली इन 7 सिस्टर्स में से किम भी नहीं करता, ओनली इन 7 सिस्टर्स प्लस हम लद्दाख करते हैं। लद्दाख क्यों? क्योंकि जून जुलाई अगस्त में हमारा यहाँ पे ऑफ सीजन होता है यू टू रेंट, और लद्दाख में तभी मतलब सीजन होता है जून जुलाई अगस्त के महीने पे। तो इसलिए मतलब और डोमेस्टिक पे जो जैसे कि आप मान लीजिए गुजरात हो गया, मुंबई, दिल्ली, तो वैसे को हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया और लद्दाख में हम कैटर करते हैं जी टूर पैकेजेस। देखिए,
1: जानना चाहेंगे जब सबसे पहले जब आपको क्लाइंट मिला था कौन थे, याद है कुछ?
2: हाँ जी, फर्स्ट गेस्ट तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, इट वॉज 48 डेज टूर, वो जो था लंबा था तवांग सर्किट, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट गेस्ट था। और मैंने आपको जैसे बोला कि मैंने जो है हॉलीडे स्काउट एक फेसबुक पेज से शुरू किया था, तो उसमें क्या हुआ था कि एक भूटान का एक कंपनी है, उन्होंने मेरा पोस्ट देखा और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और बोला कि 3 कोरियन मंक्स हैं, एक मंक और 2 नन, एंड उनको जो है वो बुद्धिस्ट सर्किट करना है, स्पेशली तवांग बेल्ट जो हमारा बोमडिला दिरांग तवांग है, और प्लस में से फिर उनको ये लुम्बिनी जो गोल्डन जो ये बुद्धिस्ट सर्किट बोलते हैं हमारा जो इंडिया का बोध गया हो गया, लुम्बिनी, सारनाथ ना, वो सब करना था। और उसके बाद में फिर उनको करना था ये लद्दाख ट्रिप। तो 3 जो कोरियन मॉन्क नंस थे वो मेरा फर्स्ट गेस्ट था
1: जी। तो इस फील्ड में आप एकदम नए थे, तो कुछ चैलेंजेस थे, कुछ परेशानियां हुई?
2: वेल, अगर आप मुझे चैलेंज के बारे में पूछते हैं, तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो 15 साल से ही टूरिज्म में था, वैसे क्लास 10 के वेकेशन से ही था। और जब मुझे अपना जब फर्स्ट गेस्ट मिला, तो वो एज ए हॉलीडे स्काउट के लिए वो फर्स्ट गेस्ट था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस जो गाइडिंग का वो तो मेरे पास में पहले से ही था, तो उसमें मुझे मतलब एक्साइटमेंट था कि हॉलीडे स्काउट का फर्स्ट गेस्ट है, पर नर्वसनेस नहीं था उसमें भी।
1: जी, हॉलीडे स्काउट की जब बात करते हैं तो सांगे सिरिंग और हॉलीडे स्काउट के साथ साथ ये भी बहुत पॉपुलर बात है कि आपने स्कूल को पेंट करवाया था, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
2: हाँ जी, आई मीन इन टर्म्स ऑफ हॉलीडे स्काउट ना, हमारा क्योंकि मैंने ये जो टूरिज्म जो है ग्रास रूट से ही मतलब मैंने देखा है। और क्या था कि स्कूल पेन को लेके अगर स्पेसिफिकली इसी टॉपिक में बात किया जाए तो मैं जो हूँ, मेरे जो दो गेस्ट है कैनेडियन लेडीज थे, मून एंड टीना, मैं उनका नाम अभी भी जानता हूँ क्योंकि दे वर लाइक वेरी इंपैक्टफुल इन टर्म्स ऑफ आई मीन जब हम घूमे थे स्कूल में ना, तो हम विलेज वॉक कर रहे थे एंड देन उनमें से एक जो था वो जो है कनाडा में टीचर थी, तो उन्होंने कहा कि चलो स्कूल जाके देखते हैं। तो जस्ट हम विलेज वॉक करते करते छुक में ही मतलब एक छुक एक विलेज का नाम आई मीन ऑलमोस्ट मैक्सिमम 30 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम दिरा, तो वहां पे स्कूल में गए तो स्कूल का जो मतलब जो कंडीशन था वो एकदम खराब था।
1: जी
2: और तभी मैंने वहां पे जो हेडमास्टर है बिकॉज इट्स ए मिडिल स्कूल, तो मैंने उनको बोला कि आपके स्कूल का जो भी है कंडीशन उसको मतलब एज अ हॉलीडे स्काउट विल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड हम स्कूल को रेनोवेट करेंगे। तो उसके बाद में फिर आई मीन और जो मेरा जो गेस्ट था उन्होंने भी कहा कि वी वुड ऑल्सो लाइक टू हेल्प आई मीन हॉलीडे स्काउट इन ये जो स्कूल को ना बनाने में। तो उसके बाद में वो तो चले गए और जब हमारा जब जून जुलाई का सीजन था तो मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, तो लकीली आई मीन माई फ्रेंड्स वर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, 10-12 लोग आए। 8-9 दिन पूरा लगातार वहां पे स्कूल पे बैठे, स्कूल में पूरा पेंट किया, जो स्कूल का जो सीलिंग है वो ठीक कराया बच्चों के बीच में, क्योंकि जब हम रेनोवेशन कर रहे थे तो बच्चों के बीच में मतलब जो उनका जो पढ़ाई का जो सेशन था वो भी थोड़ा सा बिगड़ रहा था, तो हमने उनको भी मतलब टूरिज्म के बारे में सिखाया, पेंटिंग कॉम्पिटिशन रखा, जीके कॉम्पिटिशन रखा, स्पोर्ट्स का सेशन, मतलब उनको भी अच्छा एक स्पोर्ट्स वीक का वीक तरफ में लेके गए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया। और जो सारा का सारा जो स्कूल है, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैंने 100% स्कूल को ठीक कराया, लेकिन 85% स्कूल जो था वॉल से लेके आपका सीलिंग से पेंट विंडोज वो सब कुछ हमने ठीक कराया वहाँ पे।
1: जब ये काम कंप्लीट हो चुका है एग्जीक्यूट होने के बाद, ये जानना चाहिए जो बच्चों में पर्टिकुलरली बच्चों में उनके जो एक्सप्रेशन थे बहुत खुश होंगे, किस तरह के थे?
2: हाँ जी, आई मीन देखिए पहला जो था स्कूल का हालात वो था टूटा फूटा सा। उसके बाद में जब हमने जब ठीक कराया तो फिर हमने वॉल में आपका मिकी माउस से लेके गुफी से लेके जो भी जो कार्टून होता है उन सब का मैंने पेंटिंग कराया। तो फिर क्या हुआ कि ये जो इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी टू द टॉक ना, मैं ये बोलना चाहूंगा कि उसके बाद भी मैं गया गेस्ट लोगों को लेके, और तो वहां का टीचर जो है उन्होंने

0: मुझे बोला कि आजकल जो है बच्चे, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अभी 15 बच्चे आ रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोल रहे कि स्कूल अभी इतना मतलब कलरफुल हो गया कि बच्चे खुद मतलब नहीं कि बोल रहे हैं कि मुझे स्कूल जाना है। पहले था कि कंडीशन ऑपोजिट था कि मुझे स्कूल नहीं जाना, लेकिन अब स्कूल मतलब बन चुका है, कलरफुल है, और हमने मतलब वहाँ पे ये बुक्स से लेकर बहुत कुछ वहाँ पे डोनेट किया इन टर्म्स ऑफ लाइक फुटबॉल हो गया, क्रिकेट, बैडमिंटन ना, तो वो सबको भी मतलब लेके विदिन द विलेज एक अच्छा अवेयरनेस फैल चुका था कि उनको भी स्कूल जाना ही है बोल के।
1: सांगे एक टूर ऑपरेटर तो है, बहुत प्रसिद्ध टूर ऑपरेटर, साथ ही साथ एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर और खुद एक ट्रैवलर भी है।
0: वेल आई मीन आई थिंक दिस एड ऑन टू द मेरा जो हॉबी है, क्योंकि हम इतना जगह ट्रैवल करते हैं और मेरा फोटोग्राफी में आई यूजली क्लिक विद माई फोन ओनली, क्योंकि इनिशियली जो हमारा जो यूएसपी है विद इन ऑल द टूर्स, वैसे तो हम काफी सारे डिफरेंट काइंड ऑफ टूर्स करते हैं, लेकिन फोटोग्राफी टूर जो है स्पेशली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, उसमें आई मीन वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हमारा टाई अप ये मैनचेस्टर सिटी, यूनाइटेड, टोटनहम, जो जो जगह है छोटे छोटे जगह वहां का जो ये फोटोग्राफी क्लब्स है उनके साथ में टाई अप है, तो कभी 2, 4, 6 लोग मतलब आ जाते हैं, इटली से भी काफी लोग आते हैं फोटोग्राफर्स। और आपको तो पता है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट में इन टर्म्स ऑफ ट्राइब एंड कल्चर और जो अटायर है, और हमारा यूएसपी एंटायर नॉर्थ ईस्ट, जैसे आप पता नहीं ट्राइब का जो लेडीज है वो आपको मतलब पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, सो इट इट अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ फोटोग्राफर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो इसलिए मैंने भी उनके साथ में जा जाके मतलब एक दो इधर उधर का मतलब फोटोग्राफी का टेक्निक एंड ट्रिक्स वो सीख के मैं ही वही वही वही करता हूँ।
1: जी, एज अ टूर ऑपरेटर जिस तरह से आपने नॉर्थ ईस्ट को हमने मैग्निफाई किया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को किया, इसके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। आपके जुबान से जानना चाहेंगे कि एक दो अवार्ड जो आपके लिए बहुत मायने रखता हो।
0: जी आई मीन थैंक गॉड टच वुड की अभी तक जो भी किया मैंने उसका मतलब काफी मुझे अप्रिसिएशन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर आप इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से। तो 2017 में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है हमारा और अरुणाचल का, उन्होंने मुझे बस अवार्ड दिया था बाय द नेम एक्सप्लोरर ऑफ द ईयर 2017 को था वो। उसके बाद मुझे फिर ये जो अमेरिका का जो मैगजीन है काउंटे नस्ट ट्रेवलर मैगजीन, ये जो है मतलब अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों में मतलब काफी फेमस है, उन्होंने मुझे 50 पीपल टू नो इन द हिमालय में नाम दिया था, विच वॉज अगेन अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी, बिकॉज आई मीन नो कमिंग फ्रॉम सच अ हम्बल बैकग्राउंड, एंड देन ये जो नाम था आई मीन 50 पीपल टू नो इन द हिमालय, इट वॉज क्वाइट ह्यूज फॉर मी। और साथ ही साथ मुझे फिर ये जो केयर हिमालय एक एसोसिएशन है इनका जो ऑफिस है वैसे तो ये हिमाचल में है, लेकिन ये पूरा हिमालयन बेल्ट में ये कहीं ना कहीं प्रोग्राम करते हैं। तो 2019 में मुझे थिम्पू में बुलाया था भूटान में, और वहां वहां में मुझे ये जो भूटान का जो होम मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी अवार्ड दिया था केयर हिमालय का अवार्ड, क्योंकि अंडर हॉलीडेज का हम काफी सारे इनिशिएटिव करते हैं रेस्पॉन्सिबल को लेकर, जैसे आपने कहा कि स्कूल को हमने ठीक कराया, तो साथ ही साथ ऐसा मतलब काफी सारा लिस्ट है जो मतलब हम एज अ स्मॉल कंपनी हम चाहते हैं कि हमारे साथ में जो हमारा जो सोसाइटी है वो भी ग्रो करे। और फिर उसके बाद में इन टर्म्स ऑफ अवार्ड हमने फिर ये रिसेंटली जो ईस्ट मोजो जो है जो गुवाहाटी बेस्ड मीडिया फॉर्म है उन्होंने भी ये उनके तरफ से प्लस ये यंग नॉर्थ ईस्ट हीरो का जो अवार्ड है टूरिज्म सेगमेंट में वो अवार्ड मुझे मिला था फर्स्ट एडिशन का। और उसके बाद में फिर मुझे ये आइकन ऑफ द एशिया का भी अवार्ड मिला है आई मीन यूथ में। फिर अभी तो आई मीन मैं भी भूल गया हूँ ना, अभी एक दो और है पर मुझे याद नहीं आ रहा, आई एम
1: जी,
0: रियली सॉरी।
1: लिस्ट तो मतलब बढ़ता ही जा रहा है।
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: जैसे आप एक युवा हैं, आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, आपको आप वेल रिकग्नाइज्ड है, लेकिन दुख की बात है कि अरुणाचल प्रदेश की बात करें, कुछ युवा हैं जो आज नशे की लत से ग्रसित हैं, तो उन्हें इस लत से किस तरह से बाहर निकाला जाए? आप सोचते हैं कि क्या किया जाए ताकि इस लत से दूर रहे?
0: वेल इन टर्म्स ऑफ अभी देखा जाए तो जैसे अभी ड्रग्स हो गया ना, ड्रग्स का जो प्रॉब्लम है ये तो एंटायर आपका फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ हर जगह है, नॉट ओनली इन अरुणाचल लेकिन एंटायर नॉर्थ ईस्ट पे। तो अभी ड्रग्स को लेके क्या है कि अभी मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मतलब जिनको 100% लग चुका है, लेकिन जो यूथ है जो छोटे बच्चे हैं उनको कैसे अवेयरनेस दिलाया जाए, तो इसमें मतलब पेरेंट्स का काफी बड़ा रोल होगा, क्योंकि आई मीन अभी हमारा जो ये जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, और तो यहाँ पे मतलब 26 मेजर ट्राइब्स है, और आप मान लीजिए जैसे कि वेस्ट में अभी बुद्धिस्ट हो गया या फिर हिंदू हो गया या फिर क्रिश्चियन हो गया, तो हमें मतलब मुझे लगता है आई मीन काफी सालों को ये चीज नहीं भी लग सकता है, मुझे ये चीज लगता है कि अगर हम अपने रिलीजियसली अगर कनेक्ट हो प्लस अगर हमारा एम और पेशन जो है वो प्रॉपरली अगर आई मीन यू नो देखा जाए तो आई मीन थ्रू आवर पेरेंट्स इसको अगर प्रॉपरली नर्चर किया जाए तो मतलब हम मतलब हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनको मतलब ये ड्रग्स से हम दूर रख सकते हैं। ये मतलब
1: जी
0: ये मेरा सोच है कि रिलीजन जो है मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग एक रोल प्ले करेगा, और प्लस पेरेंट्स बीइंग पेरेंट्स विल ऑलवेज लुक आफ्टर देयर किड्स।
1: जैसे अभी थोड़ी देर पहले मिला, आपने कहा कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, आप वेल रिकग्नाइज थे। इसी तरह आपकी तरह अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स थे। कुछ कंपटीशन होते हैं कि मुझे बेस्ट करना है, इससे बेहतर करना है, वो तो कुछ इस तरह के कुछ होते हैं
0: कंपटीशन? तो विद इन माई सेल्फ, तो वो तो हमें हर दिन होता है क्या कि मुझे और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। लेकिन अगर आप देखा जाए जैसे मास में ना, तो अरुणाचल में अगर मेरे जो फील्ड इस पे आप देखा जाए तो मतलब यूथ जो है इतना मतलब उभर के नहीं आ रहा। और तो हाँ, अभी जो है इन फॉर द लास्ट 2-3 इयर्स आफ्टर कोरोना काफी सारे यूथ लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि टूरिज्म एक ऐसा फील्ड है जो भी जो फाउंडर है या फिर जो भी प्रोवाइडर है या फिर जो भी पीपल आई मीन द पर्सन हु वांट्स टू बी इन दिस लाइन, उनको थोड़ा पेशेंस होना पड़ेगा। अभी मान लीजिए जैसे कि बात ये है कि जो मेरा जो सीनियर्स है तो वो लोग ही मुझे बोलते हैं कि फॉर देम जब वो लोग कर रहे थे तो उनका कॉम्पिटिटर फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स जब तक मैं नहीं आया तो कोई था नहीं। सिमिलरली अभी मैं भी 2011 से हूँ आई मीन इस फील्ड पे, लेकिन मुझे भी नहीं लग रहा है कि मतलब मेरे कॉम्पिटिटर कोई है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आई एम डूइंग द बेस्ट, लेकिन मुझे ये फील होता है। अगर आप देखा जाए तो अलग जगह से तो जो मेरे एज है और या फिर जो मेरे से छोटे वो काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन एंटायर अरुणाचल में ना हमारा जो जो मेन जो सोच है प्लस जो पेशेंस चाहिए ना, वो जो काफी लेक हो रहा है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि मतलब ओवरनाइट तो नथिंग टर्न्स इन गोल्ड ना, आपको थोड़ा टाइम देना होगा और धीरे से देना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि मुझे ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए ना। अगर आपको ए चाहिए तो आपको पूरा फोकस करके उसी में ही टिकना होगा पूरा।
1: टूरिज्म की बात करते हैं तो आपने इंटरनेशनल टूरिस्ट को हैंडल किया है, डोमेस्टिक टूरिस्ट को हैंडल किया है। क्लाइंट्स की बात करते हैं तो उनकी जो सर्विसेज जो डिमांड होते हैं किस तरह के होते हैं, क्या क्या फर्क होते हैं?
0: अभी जैसे कि मान लीजिए इनबाउंड और ये डोमेस्टिक का बात कर रहे हैं, तो अरुणाचल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको ये पीएपी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट फॉर फॉरनर्स लगता है और आईएलपी लगता है फॉर द डोमेस्टिक गेस्ट। आईएलपी जो है मतलब इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना कि पीएपी है। अभी मान लीजिए जैसे मेरा फार्म का नाम है हॉलीडे स्काउट, अगर मैंने इधर उधर करके मतलब जो पीएपी है, पीएपी में मैंने अगर थोड़ा भी माइनस प्लस कर दिया तो मेरा जो फार्म है वो ब्लैकलिस्ट हो सकता है। लेकिन जो डोमेस्टिक के साथ में वो मतलब इतना मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ पीएपी। तो जब इसलिए जब भी हमारा जो इनबाउंड जो गेस्ट होता है, जो फॉरनर्स होते हैं ना, तो उनको मतलब हम मतलब बच्चे की तरह देखते हैं उनको। उनको मतलब सुबह 5 बजे से लेके गाड़ी साफ होना चाहिए, मतलब नहीं जो प्रोफेशनलिज्म है उसको मतलब अच्छे से मेंटेन करते हुए एक गाइड हर टूर में देते हैं। अभी काफी सारा होता है आई मीन टूर ऑपरेटर या फिर एजेंसी ऐसा भी है जो मतलब बिना गाइड का भेज देता है। अभी बिना गाइड का तो वो फिर देखेगा लेकिन समझेगा नहीं। और हमारा जो ये जो एरिया है, अब यहाँ पे मानता हूँ कि तवांग हो गया, मेचुका आनी, दिस आर लाइक वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन आपको जहाँ पे देख के आई मीन यू गेट टू नो आई मीन हाउ ब्यूटीफुल द प्लेस इज। लेकिन जो अलग बेल्ट है जैसे मान लीजिए आपका जो जीरो हो गया, आपका वाकरो हो गया ना, जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे तो आपको कोई समझाने के लिए चाहिए। जहाँ जब तक आप जगह के बारे में समझोगे नहीं और प्रॉपरली मतलब ना उनका जो अटायर है, फूड हैबिट है, ये सब मतलब अच्छे से समझोगे नहीं, आप यू विल नॉट गेट द टोटल आइडिया ऑफ द एरिया ना। तो इसी बात में मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि फॉरनर्स के साथ में हमारा पूरा गाइड होता है, सब कुछ अच्छा से होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि डोमेस्टिक के साथ में हम मतलब लूज छोड़ देते हैं। उनके साथ में भी जो हमारा जो ड्राइवर्स होते हैं, अभी हमारा जो हॉलीडे स्कॉट में जो ड्राइवर्स है दे आर ऑल वेरी प्रोफेशनल। और हमारा तो क्राइटेरिया यही है कि उनका मतलब एक्सपीरियंस मिनिमम 10 इयर्स सेव अप होना है ड्राइवर्स का भी, क्योंकि वो ड्राइवर कम गाइड काम कर सकते हैं। और डोमेस्टिक को टू बी वेरी फ्रेंक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, डोमेस्टिक को टूर पैकेज चाहिए सस्ता में। मैं एकदम सस्ता वाला तो काम नहीं करता, लेकिन जितना में हो सके जो बेस्ट होगा उससे भी अच्छा और देने का हमेशा प्रयास करता हूँ।
1: तो जैसे अभी आप क्लाइंट से मिलते हैं, टूरिस्ट से मिलते हैं, डिफरेंट प्लेसेस के लोगों से मिलते हैं, तो आपने क्या सीखा उन लोगों से मिलकर, टूरिस्ट से मिलकर, क्लाइंट से मिलकर?
0: वैसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा है जिंदगी में ना, क्योंकि छोटा सा ही मैं तो आई मीन टूरिस्ट के साथ ही घूम घूम के मतलब बड़ा हुआ हूँ, तो काफी चीज सीखा है मैंने। अभी स्पेसिफिकली अभी मैं ये तो नहीं बोल सकता कि ये चीज है, लेकिन एज ए ह्यूमन और मतलब एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना, क्योंकि हमारे पास जब भी आते हैं जो हमारा जो गेस्ट है, तो टूरिज्म इज ऑल अबाउट हॉस्पिटैलिटी। काफी सारा गेस्ट हमारा मतलब आई मीन दे आर वेरी हाई एंड गेस्ट, वो इतना पे करके आते हैं, लेकिन बट देन आई मीन दे आर नेचर ऑफ लाइक यू नो टॉकिंग आई मीन रेस्पेक्टिंग नॉट ओनली मी बट देन द नेटिव ऑफ द प्लेस विलेज एंड ऑल, वो सब चीज इतना एक हम्बलनेस जो है वो सब इतना दिल को छू जाता है ना कि वो मतलब हमेशा फिर अभी दिल में रह चुका है। ऐसा नहीं है कि मतलब यू नो ये हमें रूट होना है ना, तो जो हॉस्पिटैलिटी में ऑब्वियसली हम्बलनेस तो होना है, पर हम्बलनेस के ऊपर में वो पूरा मतलब मल्टीप्लाई से मतलब नहीं कि हमें मार्टो से मार के चला जाता है कि हम और हम्बल मैंने और हम्बल होना सीखा उनसे।
1: जी तो हम्बलनेस की बात करते हैं तो आपको बहुत सारे मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में आप पब्लिश हो चुके हैं, अपने बारे में पढ़ना कैसा लगता है?
0: ये तो हमेशा एक्साइटमेंट की बात है, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया इसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। ऑल दो ये मेरा फर्स्ट रेडियो टॉक है, लेकिन हर दिन हम ग्रो कर रहे हैं, हर दिन हम सीख रहे हैं, तो आपके पास बैठ के भी मैं आई एम वेरी मच एक्साइटेड और मैं सीख रहा हूँ आपसे भी बहुत कुछ।
1: जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, सांगे सिरिंग सोशल मीडिया में भी बहुत एक्टिव है, बहुत खुश दिखता है, तो अब रियल में बहुत हमेशा खुश रहते हैं।
0: अरे अभी आई मीन रियल में हमेशा खुश तो अभी लाइफ में तो अप डाउन होता है हर किसी के बारे में, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरा मेरा जो बिजनेस ही और मेरा जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा पैशन ही था, और मैंने फेसबुक से और जो सोशल मीडिया से ही शुरू किया था। तो अभी मैं घूमते रहता हूँ जहाँ था मैंने जहाँ था ऐसे लग गया इसके साथ यहाँ वहाँ, तो कुछ भी होता है इंटरेस्टिंग वो मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो लोग आई मीन जो जो लोग है जो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स है या फिर इंस्टाग्राम फ्रेंड्स है तो देखिए तो खुशी होता है। आई मीन मेरा तो मानना ये है कि मैं खुश इसलिए क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ कि जो मुझे पसंद है।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने। फिर बात करते हैं आपके क्लाइंट्स की, अभी तक सबसे ज्यादा तकलीफ किस क्लाइंट को हैंडल करने में हुई है?
0: एक है कि काफी इंटरेस्टिंग ना कहानी, एक हमारा पास में एक कपल आया था, बोथ ऑफ देम दे वर रिटायर्ड पर्सन ना, इजरायली थे वो एक कपल था। तो जो हमारा जो टूर था वो था 14 डेज का, ये जीरो उसके बाद में ये तवांग बेल्ट का था ईटानगर का। तो मैं गेस्ट था उसमें, सॉरी मैं गाइड था उसमें, आई कांट बी द गेस्ट ना, आई वाज द गाइड देयर। ये 2015 का बात है। तो मैं उनको घुमा रहा था गुवाहाटी से, हमने पिकअप किया, हम गुवाहाटी से पिकअप करके बालपुंग की तरफ आ रहे थे। फर्स्ट दिन मैंने बहुत बात किया क्योंकि हमारा काम है जगह के बारे में समझाना है, तो फिर बोथ ऑफ देम दे वर लाइक ओके हाँ ठीक है, ओके हाँ ठीक है, तीन वर्ड यही था दिन भर। मैंने सोचा चलो कम बात करते हैं क्योंकि अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग आते हैं ना। तो फिर उसके बाद में चलो डे वन था, ये डे टू मैंने दिखा हाँ ये भी ठीक है ओके हाँ यस ना, सेम तीन वर्ड था और फोटो खींचा, मतलब फोटो भी ऐसे, मतलब आप मान लीजिए वाटरफॉल में गए एक फोटो खींचा, अभी वो कैसा है क्या नहीं है उनको भी नहीं पता, बस उन्होंने बोला चलो मैंने भी चलो ठीक है। थर्ड डे में तो मैंने भी सोचा अभी इनको इंटरेस्ट नहीं था और क्या मैं भी क्या बोलूँ ना, तो मैंने भी कहा गुड मॉर्निंग सर गुड इवनिंग सर, उन्होंने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, उसके बाद में फॉर द रेस्ट 8 to 8 days ना वो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट में चला गया पूरा का पूरा टूर, इट वाज अ साइलेंट ट्रिप।
1: हम ये भी बोल सकते हैं मेमोरेबल रहा।
0: हाँ वो हाँ आई मीन लोग आते हैं ना, आई मीन हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग आते हैं
1: जी,
0: तो ये भी एक हमारा मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था। तो जो मेरा जो ड्राइवर है वो हम अभी भी बात करते हैं कि ऐसा ट्रिप हमें कभी मिला ही नहीं, इट वाज अ क्वाइट आई मीन इट वाज अ साइलेंट टूर।
1: आने वाले दिनों में अरुणाचल प्रदेश का जो टूरिज्म का सीनेरियो होगा कैसा होगा?
0: काफी अच्छा होगा, पास जैसे था उससे तो काफी अच्छा होगा क्योंकि अभी हमारा जो टूरिज्म में अभी जो सेक्रेटरी है सेक्रेटरी सर प्लस हमारा जो जो डायरेक्टर टूरिज्म है दामो सर, बोथ ऑफ देम प्लस जो उनका जो स्टाफ है जैसे हमारा डिप्यूटी मन्ना मेरम है, दे आर ऑल वेरी हार्ड वर्किंग इन टर्म्स ऑफ लाइक प्रोमोटिंग टूरिज्म विद इन द विलेजेस। आप मान लीजिए होम स्टे से लेके गाइड से लेके जो टूर ऑपरेटर्स वगैरह सभी को काफी हेल्प करते हैं। और जैसे आपने पूछा कि प्रमोशन के बारे में ना, हमने जो है 2013 से ही जो ट्रेवल राइटर्स होता है ब्लॉगर्स होता है उनको लेके जगह जगह का प्रमोशन तो हमने भी किया है, और फ्यूचर में तो ऑब्वियसली जैसे मतलब जागरूकता बढ़ रहा है और अरुणाचल तो ऑब्वियसली हर किसी को पसंद है और हर किसी का एक ड्रीम डेस्टिनेशन है।
1: लेकिन सच्चाई ये भी कि जब हम अरुणाचल टूरिज्म की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग कुछ प्लेस को ही जानते हैं, टेक एन एग्जांपल तवांग बोलते हैं जीरो बोलते हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका?
0: जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि दिस आर ऑल बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस, लोगों को जितना पता होगा और वो जितना मतलब सोशल मीडिया में देखेंगे लोग उतने ही आएंगे। अभी आपका तवांग जीरो हो गया ये तो आपका मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट में इट्स अ पाई, हर किसी को खाना है वो ना, डेजर्ट है वो, आई मीन वो तो अभी आप हो ना हो नॉर्थ ईस्ट में गए तो तवांग जीरो ये सब तो करना ही करना है। अरुणाचल में तो आई मीन दिस टू आर द मेन अट्रैक्शन ना, लेकिन अभी अपकमिंग जैसे आपका अनिनी मैं चुका ऑलरेडी आपका टूरिज्म मैप में है, अनिनी जो है उनका जो प्रमोशन है और रास्ता भी काफी अच्छा हो चुका है पहले जैसे था। पहले आप रोइंग टू अनिनी हमें लगा था 14 आवर्स, अभी सुनने में आ रहा है कि 9 आवर्स। तो आने वाला दिन में जो कनेक्टिविटी है वो और अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली
1: कनेक्टिविटी की बात की आजकल कनेक्टिविटी भी हो गई तो इससे टूरिस्ट फ्लो किस तरह का होगा?
0: इट विल ऑलवेज एड ऑन ना, आई मीन एड ऑन एज इन लाइक एड द चार्म टू द प्लेस। जिस तरह जीरो में है तेजू में अभी रिसेंटली एक और टर्मिनल बना है ना, तो तेजू में बना मतलब वो ऑब्वियसली आपका जो ईस्टर्न बेल्ट पे जो आपका नामसाई ये रोइंग तेजू और जो अनिनी है उसको और प्रमोट करेगा। अभी हमारा ये जो अभी जीरो म्यूजिक फेस्टिवल कुछ साल पहले हर किसी का मतलब मैक्सिमम ऑफ द पीपल उनका प्रॉब्लम था कि काफी दूर है, पहले जब ये हमारा जो नाहरलगुन का रेलवे स्टेशन वो नहीं था तो ईटानगर से लोग आके फिर आई मीन 14 आवर्स या फिर 15 आवर्स किसी को इतना दूर होता था, पर अभी आप डिब्रूगढ़ से डायरेक्ट ये जो छोटा वाला जो उनका जो प्लेन है ATR या कुछ है का उससे आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो कनेक्टिविटी ऑलवेज एड्स ऑन टू द चार्म प्लस इट इंक्रीजेस द टूरिज्म इन द पर्टिकुलर लोकेशन
1: जी। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का कितना इम्पोर्टेंस है?
0: रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि अभी हमारा जो अरुणाचल पे ILP और PAP है, तो चलो हमने इन अ वे हमारा जो स्टेट को काफी सारे लोगों को लगेगा कि ये चीज नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें मास टूरिज्म चाहिए, काफी सारों को लगता है कि ये अच्छा भी है। तो अभी सोचने की बात है कि आपको क्या चाहिए ना, मास टूरिज्म चाहिए कि आपको मतलब जो जैसे चल रहा है वैसे चाहिए। तो बिजनेस में देखा जाए तो आपको मास टूरिज्म से आपका मतलब ग्रोथ होगा, लेकिन जब ग्रोथ होगा तो आई मीन साइमल्टेनियसली आपका जगह को भी मतलब मतलब पोल्यूशन तो होना ही है। जैसे आप मान लीजिए अभी हिमाचल हो गया, मंडी हो गया है ना, शिमला एंड ऑल, वहाँ पे इतना सारा टूरिज्म है कि टूरिस्ट चाहते हैं कि वहाँ पे मतलब जो उनका जो जो ग्रोथ होना चाहिए वो पूरा गंदगी में जा रहा है, प्लास्टिक हो गया एंड ऑल दोस थिंग्स ना, लीक्स गंदे हो रहे हैं ना। तो हमारे यहाँ पे अभी तक जैसे मान लीजिए आपका ये GRK जो पासर में है वो काफी अच्छा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस और फिर विद इन अवेयरनेस जो लोकल लोकल लोग करा रहे हैं, फैला रहे हैं ये नॉट ओनली इन टूरिज्म बट इन सफाई के मामले में, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में। तो हमारा जो ये जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो भी काफी लोग कर रहे हैं, लेकिन यूथ लोगों को अभी इतना पता नहीं है। तो इसमें मतलब और अभी जैसे हमने मैंने आपको कहा कि जो हमारा जो ग्रुप है आप वो उस पर और ज्वाइन करके अगर हमारा जो हमारा जो कॉन्फ्रेंस होता है उसमें आके भागवत करके मतलब नहीं इसको कैसे करके और नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड लेके जाए रिस्पॉन्सिबल में, तो उसमें मतलब वो सभी अच्छा होगा।
1: लास्ट ईयर 2022 तक तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग का जो टूरिस्ट सर्किट था वो नहीं खुला था, अब वो खुल गया, तो इससे ईस्टर्न अरुणाचल के जो टूरिज्म को किस तरह से बूस्ट मिलेगा?
0: इससे तो आपको ईस्टर्न अरुणाचल पहले बंद था, लेकिन जब बंद था फिर भी उस टाइम में जो हमारा जो फॉरेनर्स को लेके जो परमिट था, अदर जो पार्ट में PAP लगता था और वहां पे जो है RAP लगता था, लेकिन अभी लेकिन वहाँ पे PAP से ही हम जा सकते हैं। लेकिन अभी आपने जैसे कहा कि वहाँ पे टूरिज्म से कैसे उनको बूस्ट मिलेगा ना, तो तिराप चांगला में जो ट्राइब है और जो कल्चर है उनका वो काफी रिच है। ऑल दो हाँ मैं मानता हूँ कि आई मीन दे आर वेरी मच सिमिलर नागा पीपल इन ऑल, लेकिन नागालैंड में क्या है कि आई मीन टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड देन द ओरिजिनल जो है वहाँ पे जो रियलिटी है, नागा पीपल दे हैव कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, तो उनका जो मेन जो ग्रास रूट जो है जो उनका जो जड़ है ना जो USP है वो मिसिंग है। वो एक दो जगह में ही आप देख सकते हो, जैसे कि नॉर्थ नागालैंड में हो गया जो मॉन एरिया हो गया जहाँ पे हेट हंटर है, तो वो भी इन कमिंग ईयर्स वो भी नहीं रहेंगे बिकॉज ऑल द पीपल मैन दे आर ऑल 80-75+ इन ऑल। लेकिन अगर आप हमारे पार्ट पे देखते हो TLC बेल्ट पे, तो ये जो चांप है वहाँ पे अभी भी है, जो उनका जो ये वांगचो नोक्ते ये ना उनका जो तांगसा जो ट्राइब है उनका जो ऑथेंटिक विलेजेस है वो अभी भी बरकरार है, उनका जो फेस्टिवल्स है वो अभी भी वो लोग पूरा धूमधाम से मनाते हैं। तो इसको मतलब एक प्रॉपर चैनलाइज करके मार्केटिंग करके अगर डिपार्टमेंट हो गया या फिर अलग जैसे मेरा जैसा अलग टूर ऑपरेटर हो गए, अगर हम इसको प्रमोट करेंगे तो इट ऑब्वियसली बी अ बिग एड ऑन टू द एंटायर स्टेट इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर टूरिज्म।
1: जिस तरह सांगे सिरिंग ने एक अनकन्वेंशनल जो एक सर्विस बोले या एक फील्ड को लिया है, उसी तरह दूसरे यूथ किस तरह से आए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स जितने भी की कहते ना कि वो एक स्टीरियोटाइप है क्या इसी लाइन पे जाना है एक पर्टिकुलर, लेकिन वो भी अब टूट रहा है।
0: हाँ आई मीन टूट तो नहीं रहा, लेकिन क्या है कि बात लोगों में जागरूकता तो और बढ़ रहा है
1: जी।
0: टूरिज्म तो एक फील हो गया, लेकिन आजकल लेटली आप काफी सारे यूथ को डिफरेंट जो इंडस्ट्री में जाते हुए देख रहे हो, तो उसमें मैं तो फिर से यही बोलूंगा कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जब मैंने मेरे माँ को बोला था कि मुझे टूरिज्म करना है, तो उनका सेम था कि टूरिज्म ही क्यों करना है और ना आप गाइड करके क्या करोगे, नॉट ओनली माय मदर बट एंटायर फैमिली का ये सोच था, लेकिन आई वाज लाइक यू नो कॉन्फिडेंट इनफ टू कन्विंस माय मदर और उन्होंने बोला कि हाँ जाओ। तो आई मीन पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है ना वो जो मस्ट है, क्योंकि ये चीज में जो है नॉट ओनली इन टूरिज्म लेकिन आप जो भी एंटरप्रेन्योरशिप में आप बिजनेस करते हो अपना, वो ओवरनाइट टर्न नहीं होगा जैसे मैंने आपको कहा था, तो उसमें आपको स्ट्रगल तो आएगा। तो पेरेंट्स जिस मतलब जो आपको सपोर्ट देगा ना वही आपका बिगेस्ट फाउंडेशन होगा और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपका हार्ड वर्क तो वो रंग लाएगा ही।
1: तो आपकी तरह जो कोई टूर ऑपरेटर बनना चाहता है या तो गाइड बनना चाहते हैं, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोविजन दिया गया है ताकि जिसको लेकर वो और आगे बढ़ सके?
0: हाँ जी, ऐसा काफी सारा है। मान लीजिए जैसे कि मैंने तो क्लास 10 में मैं समझ गया था कि मुझे टूरिज्म करना है, तो सिमिलरली अगर कोई स्टूडेंट हो गया जिनको टूरिज्म के बारे में पढ़ना है या फिर टूरिज्म कोर्स करना है, डिप्लोमा करना है, ग्रेजुएशन करना है, तो जो डिपार्टमेंट के अंदर में SMSS का एक स्कीम है, सो आई माइट बी रॉन्ग इन द वर्ड्स नो, तो अगर वो डिपार्टमेंट में जाए तो फिर डिपार्टमेंट विल सपोर्ट देम आई मीन हिम और हर इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन में।
1: तो जाते जाते हमारे सुनने वालों को क्या कहें?
0: आपने मुझे बुलाया यहाँ पे एज यंग एंटरप्रेन्योर, तो मैं तो यही बोलूंगा कि अभी जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स है उन सभी को बेस्ट विशेस, प्लस मैं एज एडवाइस मैं यही बताऊंगा कि प्लीज हैव पेशेंस एंड ट्राई टू बी हम्बल इन व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड यू विल अचीव योर गोल।
1: तो सांगे जी आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने बारे में साथ ही साथ अरुणाचल टूरिज्म के बारे में और हॉलीडे स्काउट के बारे में इतनी सारी जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी।
1: ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 MHz है। अभी आप सुन रहे थे वीकली इन्फो।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे वीकली इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम। आज के मेहमान आप सुन रहे हैं आकाशवाणी तनगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। दोस्तों छोटे से अंतराल के बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और आप सुन पाएंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। केवल बीजेडी के डॉ. संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक के बाद ये मार्च निकाला गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर

सभा के पास पुलिस लाठीचार्ज के दौरान घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की ज्यादती और लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की SIR से संबंधित अपीलों के शीघ्र निपटारे की याचिका पर संज्ञान लिया। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जो स्वामित्व और किराए सहित आवास के विकल्प प्रदान करे। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की कमी आई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 413 अंक गिरकर 78,130 पर और निफ्टी 133 अंक गिरकर 24,451 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचारों को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक, जहाँ हम आपको सुनवाते हैं 60s, 70s और 80s के दशक के कुछ खूबसूरत गीतों को। तो दोस्तों आइए थोड़ा वक्त पीछे ले चलते हैं, जहाँ सुरों में शोर नहीं सिर्फ एहसास हुआ करता था। लोग चलते हैं उस दौर में जब मोहब्बत आहिस्ता चलती थी और गीत जिंदगी के साथ साथ परे हुआ करते थे। ये कार्यक्रम आप सबके यादों के नाम, सुकून के नाम और उस खूबसूरत वक्त के नाम जो कभी पुराना नहीं होता। तो आइए हिंदी क्लासिक म्यूजिक कार्यक्रम का सबसे पहला गीत सुनते हैं, कारवां फिल्म से कितना प्यारा वादा है, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

0: Diana.
1: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया।

0: चैलेंज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स OTT ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स OTT ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: दोस्तों, ज्योतिष अंतराल के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हिंदी क्लासिक म्यूजिक में, जहां हम सुनते हैं 60s, 70s और 80s के कुछ खूबसूरत गीतों को। तो चलिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, आ गले लग जा फिल्म से तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप बने हुए हमारे साथ कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में। दोस्तों, कार्यक्रम का अंतिम लेकिन बहुत ही खूबसूरत गीत सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में। ड्रीम गर्ल फिल्म का टाइटल ट्रैक, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल।

0: दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ ही आज का हिंदी क्लासिक म्यूजिक कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स।
1: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स OTT ऐप माई वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स OTT ऐप के माई वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

जय दोस्तों, अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। और कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन पा रहे हैं बिल्लू फिल्म का खुदाया खैर, इस गीत को गाया है सोहम चक्रवर्ती, आकृति कक्कड़ और मोनाली ने।

0: and senior police officials at the Chaibasa Police Center. The DIG said over the past year, 52 Naxalites have surrendered, 18 were killed in encounters, and 29 were arrested. In the run-up to India's 80th Independence Day, Tiranga Yatra was taken out in Punjab as part of the nationwide Har Ghar Tiranga campaign led by BJP Punjab President Kewal Singh Dhillon in Ropar district last evening. Hundreds of youths participated in it, carrying the tricolour in their hands and conveying the message of patriotism and national unity. More from our correspondent.
1: Hundreds of youths participated in Tiranga Yatra last evening at Rupert, carrying the tricolour in their hands and conveying the message of patriotism and national unity. Led by BJP Punjab President Kewal Singh Dhillon, Mr. Dhillon said that Punjab's history is replete with countless sacrifices made for the freedom of the country. Chandigarh administration also organised a cultural programme as part of the Har Ghar Tiranga 150 years of Vande Mataram campaign. The administration has planned a number of Jan Bhagidari activities till August 17th, including Tiranga rallies, walkathon, bike car rally, Rangoli and Rakhi making workshops, Tiranga Mela and Nuggad Nataks, besides cultural programs and exhibitions in the city. This is Rajesh Bali for Akashwani News, Jalandhar. Ghar ghar Tiranga, har ghar
0: Tiranga. On the occasion of Savan Shivratri today, a large number of devotees are offering water to Lord Shiva, marking the conclusion of the Kanwar Yatra. Vice President C.P. Radhakrishnan has extended his greetings to all fellow citizens on the occasion of Shivratri during the sacred month of Shravan. At least 9 people have been killed and dozens injured in Russian overnight attacks across Ukraine, according to regional governor Ivan Fedorov. 6 people were killed and 19 injured in Zaporizhia. He said rockets and guided aerial bombs were used in the attacks. In the Dnipropetrovsk region, 3 people were killed and 5 injured in Russian drone and artillery strikes, officials said. In Kiev, Mayor Vitaly Klitschko said the capital came under a ballistic attack. Emergency services reported a warehouse fire and 1 person injured. Meanwhile, Russia's defense ministry said it struck defense industry and transport and logistic targets in Kiev and Zaporizhia. It also said it intercepted and destroyed 396 Ukrainian drones over 15 Russian regions. Amid widespread monsoon rains in Himachal Pradesh, normal life has been affected. Rain is being reported from most parts of the state, including the state capital, Shimla. A report.
2: In view of the possibility of heavy rainfall in Kullu subdivision today, all educational institutions have been officially closed. According to a report from the State Emergency Operations Center, traffic has been disrupted on 259 roads across the state due to landslides and rain. Besides, 161 power transformers and 54 drinking water supply schemes have also been affected. The Mandi Kullu National Highway 21 has been blocked near Jhalogi due to shooting stones falling on the road. Meanwhile, the Meteorological Center Shimla has issued an orange alert for heavy rainfall in 5 districts, Shimla, Sirmaur, Kangra, Hamirpur and Mandi. A yellow alert has also been issued for 4 other districts, Chamba, Kullu, Solan and Bilaspur today. The department has advised people to exercise caution during adverse weather conditions and avoid unnecessary travel to vulnerable areas. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: The Indian Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over Odisha during the next 2 to 3 days. The Met Department also predicted heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over the Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura and Rajasthan over the next 2 days. In Canadian Open 2026, former world number one Iga Swiatek of Poland stormed into the semifinals with a 6-2, 6-1 win over Russia's Diana Schneider in 64 minutes. The 6-time Grand Slam champion will face Ukraine's 9th seed Elina Svitolina, who defeated Ekaterina Alexandrova . Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% lower in afternoon trade today. The Sensex lost 398 points to 78,145 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Disruption continues in Parliament amid opposition uproar on several issues. Both houses adjourned till 2 p.m. Supreme Court clarifies immediate FIR must be registered for every missing person, irrespective of age or gender. 9 people killed in overnight Russian airstrikes across Ukraine. IMD issues alert for heavy to very heavy rainfall in parts of Himachal Pradesh for today and in Odisha for next 3 days. And in Canadian Open tennis, Poland's Iga Swiatek storms into semi-finals with straight set win over Russia's Diana Schneider. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
4: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार, सदन चलना चाहिए।
3: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
5: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
3: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
6: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को, बधाई दे रहे हैं जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांतिपूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
3: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने

0: ने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
1: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृहमंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
0: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
2: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। आकाशवाणी समाचार रांची।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो उसके गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं केश कुमार बल।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की

0: पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मानसून की बदलती स्थिति और अनलीनों के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
1: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन

की नौवीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित, लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात।

0: रोचक संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों सभा के इस भाग में लीजिए आप प्रस्तुत है कार्यक्रम हिट ऑफ 90s। दोस्तों 90s का बॉलीवुड अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत दौर रहा है। इस दौर की फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं थी, बल्कि उनकी कहानियाँ, कैरेक्टर्स और इमोशंस लोगों के घरों तक पहुँच जाते थे। और ऐसे ही एक फिल्म थी 1994 में रिलीज हुई हम आपके हैं कौन, एक ऐसी फिल्म जिसे देख कर लगा कि बॉलीवुड में फैमिली रिलेशनशिप, सेलिब्रेशंस और रोमांस को भी एक ग्रैंड सिनेमेटिक एक्सपीरियंस बनाया जा सकता है। सूरज बड़जहतिया के डायरेक्शन में बनी इस फैमिली एंटरटेनर में सलमान खान, माधुरी दीक्षित, मोनिश भल और रेणुका साहा ने लीड रोल्स में नजर आए थे। कहानी राजेश और पूजा के शादी से शुरू होती है, जहां राजेश का छोटा प्रेम और पूजा की छोटी बहन निशा एक दूसरे से मिलते हैं। पहले दोनों के बीच शरारत और दोस्ती होती है, जो धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। सलमान का प्रेम चार्मिंग और फैमिली लविंग था, और वही माधुरी की निशा एक चेयरफुल, ग्रेसफुल और इमोशनली स्ट्रांग कैरेक्टर थी। दोनों की केमिस्ट्री फिल्म के सबसे बड़ी हाईलाइट्स में से एक बनी। तो आइए इस फिल्म के गाने से शुरू करते हैं। सबसे पहला गाना सुनते हैं, पहला पहला प्यार है, SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज में।

दोस्तों FM 103.1 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट ऑफ 90s और आज हिट ऑफ 90s में हम बात कर रहे हैं फिल्म हम आपके हैं कौन की। इस फिल्म की असली जान थी उसकी फैमिली बॉन्डिंग, शादी के फंक्शंस, रस्में, घर के मेंबर्स की मस्ती, नोकझोंक और छोटी छोटी खुशियों को फिल्म ने इतने खूबसूरत अंदाज में पेश किया कि ऑडियंस को लगा जैसे वो खुद उस परिवार का हिस्सा हो। फिल्म में वेडिंग सेलिब्रेशन सिर्फ बैकग्राउंड नहीं था बल्कि का इम्पोर्टेंट पार्ट रहा। हर फंक्शन के थ्रू कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप्स और उनकी बॉन्डिंग सामने आती रही और इसी फैमिली एटमॉस्फेयर के बीच प्रेम और निष्ठा की लव स्टोरी भी आगे बढ़ती रही। फिल्म का एक और मेमोरेबल कैरेक्टर था तफी, जो प्रेम और निशा के बीच मैसेजेस पहुंचाने से लेकर क्लाइमेक्स में इम्पोर्टेंट रोल निभाता रहा। तफी का कैरेक्टर छोटा था लेकिन ऑडियंस के दिल में उसकी जगह बहुत बड़ी बन गई। तो आइए इस फिल्म का अगला गाना सुनते हैं, जूते लो जूते दे पैसा ले लो। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम ने। ये गाना दोस्तों 90s की शादियों का फेवरेट बन गई थी। प्रेम, निशा और पूरी फैमिली की मस्ती ने इस गाने को एक अनफॉरगेटेबल वेडिंग नंबर बना दिया। तो आइए सुनते हैं, जूते दे दो पैसे ले लो।

जहाँ दोस्तों हम बात कर रहे थे फिल्म हम आपके हैं कौन के। फिल्म की कहानी तब इमोशनल टर्न लेती है जब पूजा की अचानक मौत हो जाती है। उसके जाने के बाद परिवार और उसके छोटे बच्चे की जिम्मेदारी एक बड़ा सवाल बन जाती है। प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन परिवार की खुशी और जिम्मेदारी के सामने उनके सामने एक डिफ़िकल्ट डिसीजन आ जाती है। यही फिल्म सिर्फ रोमांस या कॉमेडी से आगे बढ़कर सेक्रीफाइस, फैमिली वैल्यूज़ और रिलेशनशिप्स की इम्पोर्टेंट को हाईलाइट करती है। सलमान खान ने प्रेम के कैरेक्टर में अपने नेचुरल चार्म और कॉमिक टाइमिंग से ऑडियंस को एंटरटेन किया। वहीं माधुरी दीक्षित ने निशा के रोल में अपनी ग्रेस, एक्सप्रेशंस और इमोशनल परफॉर्मेंस से सबका दिल जीता। फिल्म के म्यूजिक परफॉर्मेंसेस, कलरफुल वेडिंग सीक्वेंसेस और इमोशनल स्टोरी लाइन ने मिलकर इसे 90s की सबसे मेमोरेबल फिल्म में से एक बनी। हम आपके हैं कौन फिल्म की सक्सेस सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक लिमिटेड नहीं थी, इसका कल्चरल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा रहा है। फिल्म ने 90s के फैमिली एंटरटेनमेंट को एक नया बेंचमार्क दिया और वेडिंग सेलिब्रेशंस को बॉलीवुड के एक आइकॉनिक विजुअल एक्सपीरियंस में बदल दिया। आज 3 decades से ज़्यादा वक्त बीत चुके हैं, लेकिन प्रेम और निशा के लव स्टोरी, तफी, फैमिली गैदरिंग्स और फिल्म का पूरा वेडिंग एटमॉस्फेयर अब भी लोगों की यादों में बसी हुई है। और शायद इसीलिए हम आपके हैं कौन को सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं, फिल्म कहना कम होगा, ये 90s के उस दौर की एक खूबसूरत याद है जब सिनेमा में प्यार था, परिवार था, इमोशंस, सेलिब्रेशंस था और सबसे बढ़कर अपनापन था। और इसी अपनापन की वजह से फिल्म आज भी हिट ऑफ 90s में अपनी एक खास जगह रखती है। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं हम आपके हैं कौन फिल्म का अगला गीत बाबुल। इस गीत को गाया है शारदा सिन्हा ने।

इसी के साथ ही दोस्तों आज का हिट अप 90s कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से कुछ ही देर बाद यानी 2:58 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से न्यूज हेडलाइंस। 3 बजे आप सुन पाएंगे मिशमिका मान श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:15 पर आप सुन पाएंगे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। हम लौटेंगे 3:30 पर कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ। आप सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

कहीं कहीं ए त्यांग प्राणियों वैसिया कनंगुने ए तमलाद ताहिं हना तुम रुला

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ताई खामते श्रोताओं का कार्यक्रम। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी तनगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। और दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए मेरे साथ यानी आपके रेडियो साथी RJ दुनिया के साथ। और दोस्तों, वक्त हो चला है कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का।

चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉलीवुड अपडेट पर नजर डालते हैं और एक नजर डालते हैं इस वक्त के बॉलीवुड के सबसे ट्रेंडिंग न्यूज पर। तो आज की सबसे इंटरेस्टिंग बॉलीवुड खबरों में से एक है अक्षय कुमार का राजेश खन्ना का आइकॉनिक रोल प्ले करना। जहां दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय, फरहान अख्तर और डायरेक्टर नीरज पांडे की अपकमिंग आर डी वर्मन बायोपिक में अक्षय कुमार राजेश खन्ना के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करेंगे। फिल्म लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर आर डी वर्मन की लाइफ और म्यूजिकल जर्नी पर बेस्ड होगी। राजेश खन्ना और आर डी वर्मन की पेयरिंग बॉलीवुड के गोल्डन एरा का एक खास हिस्सा रही है, इसलिए अक्षय कुमार का राजेश खन्ना के अंदाज में देखना ऑडियंस के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन अब बड़े पर्दे के साथ टेलीविजन पर भी एक नए अंदाज में नजर आने वाले हैं। अजय देवगन पॉपुलर क्राइम शो क्राइम पेट्रोल के नए सीजन को होस्ट करेंगे और वो अनुप सोनी को रिप्लेस करी है। अजय ने रिपोर्टेडली 15 एपिसोड्स की शूटिंग भी कंप्लीट कर लिया है। शो का नया सीजन 31 अगस्त से प्रीमियर होने वाली है, यानी अब क्राइम स्टोरी सुनाने के अंदाज में भी अजय देवगन का सिग्नेचर स्टाइल देखने को मिलेगा। सलमान खान और संजय दत्त के फैंस के लिए भी एक एक्साइटिंग अपडेट है। इंटरनेशनल एक्शन थ्रिलर सेवन डॉग्स अब इंडिया में 21 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त स्पेशल अपियरेंसेस में नजर आएंगे, जबकि लीड रोल्स इजिप्शियन एक्टर्स करीम अब्दुल अजीज और अहमद अजीज प्ले करे है। फिल्म का मिडिल ईस्ट प्रीमियर पहले ही हो चुका है और अब इंडियन ऑडियंस को इस एक्शन पैक्ड प्रोजेक्ट्स का काफी इंतजार है।

फरहान अख्तर और देव सिडवानी की प्रोडक्शन कंपनी एक्सल एंटरटेनमेंट ने हिंदी सिनेमा में अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं और स्पेशल माइलस्टोन पर कंपनी ने एक्सल ओरिजिन्स नाम का इनिशिएटिव अनाउंस किया है, जिसके तहत 30 साल से कम एज के यंग फिल्म मेकर्स को सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। दिल चाहता है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और गली बॉय जैसे प्रोजेक्ट्स देने वाली एक्सल एंटरटेनमेंट का ये इनिशिएटिव नई पीढ़ी के फिल्म मेकर्स के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। रिलीज से पहले ही बटवारा 1947 और आवारा बंटु के बीच बॉक्स ऑफिस कंपटीशन की चर्चा शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी डियोल स्टारर बटवारा 1947 के डिस्ट्रीब्यूटर्स सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में मैक्सिमम हद तक की रिपोर्टेडली ऑल शो सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन थिएटर्स में स्पाइडरमैन की स्टेडी परफॉर्मेंस भी शो एलोकेशन को अफेक्ट करी है। अब देखना होगा कि रिलीज के बाद ऑडियंस किस फिल्म को ज्यादा पसंद करती है। वही राजकुमार राव की अपकमिंग फिल्म प्रहार को लेकर भी नई रिपोर्ट सामने आई है। फिल्म 4 सितंबर को रिलीज होने की पॉसिबिलिटी के साथ हेडलाइंस में बनी हुई है और साथ ही क्लैश मिर्जापुर द मूवी से हो सकता है। अगर डेट्स फाइनल होती है तो सितंबर का बॉक्स ऑफिस वीकेंड काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है।

और साथ ही दोस्तों, अगर आप डॉग लवर हैं तो ओ माय डॉग आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फिल्म हो सकती है। पंकज त्रिपाठी स्टारर ये फिल्म 7 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को ओ माय गॉड टू फैम डायरेक्टर अमित राय ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी एक स्ट्रीट डॉग ऑस्कर के अराउंड घूमती है, जो एक क्राइम मिस्ट्री में अनएक्सपेक्टेडली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कहानी में इंसान और डॉग्स के बीच का इमोशनल बॉन्ड, लॉयल्टी और रेस्क्यू

का एंगल भी दिखाया गया है। पंकज त्रिपाठी के साथ फिल्म में निखिल कुमार, राजेश कुमार, पवन मल्होत्रा और गीता अग्रवाल शर्मा भी इम्पोर्टेंट रोल्स में नजर आ रही है। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से मिक्स टू पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। खास तौर पर ऑस्कर नाम के दो की परफॉर्मेंस ने सबका अटेंशन खींच लिया है। सोशल मीडिया रिएक्शंस में कई व्यूवर्स ने फिल्म को एक हार्टवार्मिंग फैमिली एंटरटेनर बताया है और कहा कि ऑस्कर ने फिल्म में पंकज त्रिपाठी तक को स्पॉटलाइट में चैलेंज कर दिया है। और अब बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो 10 अगस्त की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने अपने थर्ड डे पर स्लो बट स्टेडी ग्रोथ दिखाई है। यानी वीकेंड के दौरान फिल्म के कलेक्शन में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला।

इसी के साथ ही दोस्तों बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे वांछो श्रोताओं का समाचार।

ईजो आकाशवाणी ईटानगर अनि अगस्त लिप नि बन मता तारिक मंगलवार इपो हसो आजमबाजी पुनी मिनट मुई के फिशम लके वांचो सायका पा कपई पवा कहो पाई फाले वंका वंगसुर इंडियन आर्मी सिपाही थम या अरुणाचल प्रदेश पुलिस थम इजो में इंस्टाग्राम या एक्स निंकिया सोशल मीडिया का होंगे ताई प्लेटफॉर्म पो मा चाइना दे सिपाही थम अरुणाचल प्रदेश चावलों को लेन ले नपदों ले हाइना ले आपु आपु क्या वीडियो का हो पो होजिंग मंचंग है ओ अब हाया का अंग वीडियो पो इंडिया हिया बांग्लादेश बॉर्डर तो थोतो गाइडों दो क्या होजंग वीडियो पो आपु का पाउ अब है ओ बोमा इंडिया हिया चाइना देश नी लोंगजी जंग तो टू वन मई ले वही तैनुई तैपो ओले वन ले चोन चोन नीट एग्जाम जु मके का अंगउ हु मा प्रोटेस्ट थम क्या लाइन नो सम नु तो पुलिस थम ए पाले फित मै तनंगंग क्या का अंगउ तो खंग ओम लाले माउ ममु का अंगउ हु मा ऑपोजिशन थम तले यो मुक मोबले सट के खो मा लोकसभा या राज्यसभा नि यो तु सो अनि संफई अनि बाजी कप हन पक मा आफान क्या मोट ngaile सटले Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan a mani New Delhi ma National Scholarship Portal NSP makang a des angkya mama mohonui tokya jo agriculture line no samnu angkya scholarship ya fellowship munisen released honle kodwa kahoma ajang ba haja ma hazat azok honai jo line no sam ang Direct benefit transfer DBT holam makang sa mata kuti taku yung munisan fan tamapan le kodwa. Hayang kahotam puli ang pa des independence day ponapong 2047 sang pong malala India ta atoalan vikisit bharat des ang zingijaw le achang pukuma chasan po yuva shakti e mongluisa ngo taikya asua may homokosat po aho angai kya bo ma national song vande matram sai jingijau ke phaima ho ta puni ban jang pung lan an kya akha akhan le pon pung ai bo ma haja pon prime minister narendra modi a red fort ma des ni lok adanan to le des khanak nu jan sai le jangman ka je le pon pung ai chang tai le haja ka mani new delhi ma defense secretary rajesh kumar singh a media ka hong tai mi tham phai van kya jangman ka je ma ngai ban le Arunachal Pradesh Science and Technology Minister Dasang Lupul Ma Akole Mani Itanagaram Keti Office Ma Tawang Region Jang Tokya Geothermal Exploration Hiya Critical Mineral Exploration Motosato Pak Tiketo Angta Review Meeting to So Aso Apole Minister Pul Haja Ma State Sustainable Development Hiya energy security to so phong le asuna se puku ma state ma tainang hu te kya geothermal resources pho mokosa le alai adan ang azong mong hai le ban kya bo ma haja hanpak ma scientific institutions public sector undertakings ya government agencies hotam pho tata phai ta ang asham akui le mokosa ang kya mot le van le Asian District Administration tham a mani har ghar tiranga pon angketa pon pon sen ma district dc office complex makang a pasigat honoi main market makang gandhi chowk kapla aham atai le ta bike ya cycle tiranga rally sole boma haja rally honoi mla tapi darang a flag of hon le kahoma ajang ba haja rally tu so ma pasigat municipal council pmc tham chief councillor tagom padung pmc deputy chief councillor kamin lego department pho akho kemi tham officers ya officials pho boma public khanak nu yo hakai le bakle Arunachal Pradesh Home Minister Mama Natung e chonchon le Itanagar chimpu honoi mami hok ani drug hangasan mi kapalo kya hanpak ma Itanagar capital honoi police tham asu hu pule achok asan le boma ja kap kya khanak ni ma munisen ma thadba laksa taku jo tha ang satai hota pujam azam gram

0: heroin le nyakka holi drug chang tai la le au tai kya hing hai bang ke chang le home minister natung aja ba mata social media ka ho ma halike law enforcement mot sat ma police tham to so noi phongo tai kya han pak ma chimpu niti vihar hiya ganga village honoi pho cha san pho asu hu tai po la achwa ka san kya ka chu ngai ban le Union Public Service Commission UPSC hotham tokhang e government of India angke tabi jo modsat post direct recruitment hanpakma ngai le taile bo mahaja hanpakma eligible candidates tham e application lai phaton le bakhai le kya ka pha le taile kahoma ajang ba haja to chu kya candidates tham e hom application lai UPSC hotham angkya online recruitment application portal makhang ija den sa achat tarik manana ko otonang swakai meteorological center itanagar mci tokhang papum pare district tokhang omlal arunachal pradesh angkya hokban mata taku jo district ma ani zaita honoi to jang adung aking puela sabat taila laketa yellow alert ka ho phale taile ka ho ivei Ija Akashwani Itanagar Kahpe Misai Apahai.
1: अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का समाचार दोस्तों बता दो अगर आप वांचो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर का मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर या फिर दोस्तों आप न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप के द्वारा भी हमारे कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं इस वक्त आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: अब दोस्तों आप सुन पाएंगे हमारा अगला कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। तो चलिए कार्यक्रम का सबसे पहला गीत सुनते हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म से दीवाना है देखो। इस गीत को गाया है अलका याग्निक, सोनू निगम और करीना कपूर ने।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: are you?
1: Hey you? Hey you guys? Listen to me! Baby! Ooh la la!

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात। दोस्तों इसी के साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे ईद मिश्र में श्रोताओं का समाचार।

0: कार्यक्रम ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं इदु मिसमी श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर पुयाला पुची जोहलो के आंडोलिनी एतनिची इदु मिसमी आहोला कीजी दरगालंबो अरुणाचल प्रदेश में ची आची पाही माने इंडिया ने चाइनीज आर्मी में आंदोगा अदाला ने नौशा आपिगा चाहे बहा इंडिया बांग्लादेश आती पहिमा ची नौशा ची आपिगा दा ने गवर्नमेंट में लाशिगा ने आ नौशा आपि जिम ना लगा दा आहोगा आया है अरुणाचल प्रदेश आती पही माची गुम दा ने इंडियन आर्मी दो ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस में सूतेगा बदा ने गवर्नमेंट में लाशिगा नीट यूजी एग्जाम ची पुमा ने आजो आहिता में आए छमा खो एके छिगा महो पुलिस में तोसा हुतिगा बा राम मंदिर मचे पहुँ आकु दोने इकिशा उखो थोपु लापतेगा ने ओपोजिशन में गाहुगा बने लोकसभा है जी आने तगा दा आहोगा इंडिया ब्रह्मची एग्रीकल्चर कॉलेज दोने यूनिवर्सिटी मामा आजो आहितो आगे बा स्कॉलरशिप दोने फेलोशिप पहुँ है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान में बुनी मई दिल्ली नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मने आहेबदा आहोगा एजर बताहो एचामा आजो आहित आगे बने अन्यो खेको पाऊ आचते आचे आजो आहित आचे अकाउंट मा एंदो एठोंगा बता आहोगा वंदे मातरम आशे खायबा माऊ मारहुनुबा बबो इंडिया में आचे हेता तोला इहुनुबा इनी एनगाई बो महोम आयु अलम्र में इंडिया तिवागे बने काजिन जोगाबा एकगाई बोधा ने डिफेंस सेक्रेटरी आजा राजेश कुमार सिंह में बुनी मध्य दिल्ली में आहो मीडिया मुगो चिचगा महो लाख गने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में मध्य दिल्ली में ची रेड फोर्ट माने इंडिया में आती है तत्तला यहूनु बा इन्हीं ऐनगा ओ मची असलात तो ये बावदा ला होगा साइंस दोने टेक्नोलॉजी मिनिस्टर दसंगलु पुल में बुनी ईटानगर माने तवांग अतिका मची लिखी कोकोची आम कारानो के ओची पुआ मीटिंग जी ने गाने आर्थिकाची डेवलपमेंट जोता एठोजिगा आम आयो के बने लिखे कोकोची आम है प्राणे लोकेजी ना लगे बदा आहोगा लिखे कोकोची तीन योगा माने इलेक्ट्रिक पावर आयो प्रावधा ने मिनिस्टर में लगाने सीईएस दोने एचएस ने ऑयल इंडिया लिमिटेड में जोनेगा जोता चिपुआ अथुसु ओ बदा आहोगा बुनी ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पासीघाट माचे डीसी ऑफिस माने मेन मार्केट गांधी चौक मा लिबा ओको खे इंडिया माचे आसला थुचिपुआ बाइक रैली माने कैंपिंग थुगा जिगा एमएलए तापी दारांग में पासीघाट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन माचे चीफ काउंसलर तोगम पादुंग डिप्टी चीफ काउंसलर कामिन लेगोदो ने डिपार्टमेंट आजाहे तालुबो एकानोता ने आसला के गने आहे बचिदा आहोगा अनिहु लाग पाऊ रे माऊ तारहु कसो ग्राम आयु मुर्गा हिरोइन की ने अगुया ट्राइबल मुकाने है बुनी ईटानगर ची चिंपु अधिका माने चिंपु पुलिस में रोतेगा ने एनडीपीएस एक्ट आचुको को माने केस आज तेगला दा ला होगा कैपिटल अधिका माने आयु मुर्गा अंजी नाबा एवगा बने ईटानगर कैपिटल अधिका ची पुलिस में अनि पांबा एगाजी विधान ने होम मिनिस्टर ममाना तुम में नारंगादा आहोगा पेरू माचे लिमा आतिको ने बी डब्ल्यू एफ पेरा वर्ल्ड सर्किट बैडमिंटन टूर्नामेंट आखगा मा एमा बेगे अरुणाचल प्रदेश माचे बिरी ताकार में गोल्ड मेडल आने के बचा है एंगो खाबाबुदा ने चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू में नारंगादा आहोगा हेल्थ रिसर्च डिपार्टमेंट दो ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डी एच आर आई सी एम आर में एचला पुची जोहलो के ने जोहलो नि माचिनी आयु ओलम्ब्रो के बने इंडिया माचे आतिपु इहु कासो माने साइन एमगा अखाने गा जिदा ला होगा सेंट्रल गवर्नमेंट माचे पोस्ट पोगा मामा क्यू के बने आतिकाची ज्वाला को जिया में एचला पुची हियु माचे ने जान्यो हियु माचे ने लिबा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पोर्टल मा बलाने आमु हाते जिना ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी मच में लगा दा आहोगा पफुम पढ़े लाता गए अरुणाचल प्रदेश में ची होलोके डिस्ट्रिक्ट में।

0: रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, उसके तुरंत बाद हम शुरू करेंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स।
1: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक, जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
0: दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। आइए अब बेहतर हिंदी फिल्म में सॉन्ग्स कार्यक्रम को जारी रखते हैं और पहला गीत सुनते हैं हीरोपंती फिल्म से मोहित चौहान की आवाज में, रब्बा।

दोस्तों, इस गाने के साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। और अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। साथ ही बता दो दोस्तों, इसी के साथ ही हम आज की दूसरी प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूँ इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आपको रोजाना की तरह बेहद पसंद आए होंगे। इस सभा के कार्यक्रमों को बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंचाने में आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता विश्वजीत। साथ ही बता दूं दोस्तों, इस तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा में। और तीसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाएंगी आपकी अपनी RJ अपर्णा। तो दोस्तों, अब मुझे यानी आपकी रेडियो साथी RJ दुनिया को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तानसार समाचार। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे तानसार श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही DRM के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, FM बैंड के 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का अरुण FM है। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं दोस्तों आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख तो अतिथि है, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे, है ना दोस्तों। तो आज उस पॉजिटिव थॉट के साथ ही हम अपनी तीसरी प्रसारण सेवा की आगाज करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी वार्म इवनिंग फ्रेंड्स। FM बैंड के 103.1 MHz पर अरुण FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज के इस चंद लम्हों के खूबसूरत सफर में आपके राह के हमराही बनने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं संचार निष्पादक गैर एते तकनीकी अभियंता ताना आतुम तथा स्टूडियो और HPT में मौजूद सभी साथियों के साथ। जी हाँ, मैं यानी कि आप सभी के अपनी आरजे अपर्णा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती है और साथ साथ चलने का बिल्कुल वादा तो करती ही है। लेकिन इससे पहले कि हम सभा की शुभारंभ करें, हम शुक्रिया अदा कर देते हैं आरजे दुनिया का, जिन्होंने अपने सेकंड ट्रांसमिशन के दौरान आप सभी का भरपूर एंटरटेनमेंट की है और जाते जाते मुझे स्टूडियो हैंड ओवर करके गई है। तो थैंक यू, शुक्रिया आरजे दुनिया। बहरहाल दोस्तों, आज की शाम को हम खास बना देने के लिए बिल्कुल मौजूद है आप सभी के खिदमत में। तो एक शाम आप दोस्तों के नाम और बस शुरू करेंगे हम गुड इवनिंग ईटानगर प्रोग्राम बस कुछ ही देर में। आप सब बने रहे अरुण FM के साथ और सुनते रहे अरुण FM को।

बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का गुड इवनिंग ईटानगर के सेगमेंट में। ये वो कंपोजिट सेगमेंट होता है जहां हम कुछ इंफॉर्मेशन साझा करते हैं मनोरंजन के साथ साथ आप सभी के लिए। दोस्तों आज एक बहुत ही खास दिन है, आज 11 अगस्त है। दो लफ्ज मैं जरूर कहना चाहूंगी लेकिन भाषा होगी बंगाली में। एक बार विदाई दे माँ घुरे आशी, एक बार विदाई दे माँ घुरे आशी, हाशी हाशी पोर्बो फाशी, देख बे भारत बाशी। जी हाँ दोस्तों, आज 11 अगस्त है 1908 में। आज ही के दिन अमर क्रांतिकारी खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में मात्र 16 साल की उम्र में फांसी की सजा दे दी थी और उनके इस ऑनर में प्रीतंबर दास ने ये जो कविता है उसे लिखा और बाद में बहुत लोगों ने इसे स्वरबद्ध भी किया और इसका मतलब है बिड मी फेयरवेल वंस मदर आई विल कम बैक सून, मुझे अलविदा कह दो माँ मैं एक बार खुशी खुशी से मैं फांसी पे पड़ जाऊंगा, यानी कि फांसी में चढ़ जाऊंगा, अपने भारतवासी मुझे देखेंगे, भारत की जो है भारत के लिए भारत की रक्षा के लिए मैं बार बार ऐसे फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं। खुदीराम बोस को जो है आकाशवाणी के ईटानगर तथा अरुण एफएम केंद्र की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं हम सब। और चलिए दोस्तों एक बहुत ही दिल को छूने वाली गीत आप सभी को सुना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम कभी ना भूले कि भारत को आजाद कराने में न जाने कितने खुदीराम बोस ने अपनी जान दे दी थी। सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित है।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारे आज की गुड इवनिंग ईटानगर का ये सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आप सभी को बता दें कि अब से बस कुछ ही देर में अब बारी बारी से हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार तथा नोक्ते समाचार सुन सकेंगे। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होनी जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हमले में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड के छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री और रांची के भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया। नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चा का रुख बदलने और दोहरा राजनीति रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं। उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्रवाई भी बाधित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया, लेकिन पहले ही इसे पारित कर चुकी है। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो भी हो, उसकी गुमशुदगी की तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति असानुद्दीन अनामुल्ला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरण द्वारा निपटाए गए अपीलों का विवरण देने

0: को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकारी ई मल्टीप्लेक्स जैम जेईएम व्यापक भागीदारी, पारदर्शिता खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने यह बात वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जैम के 10 वर्षों पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हो। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना के सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने यह बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गोवा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के विभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी ने भारत के जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य जीआई उत्पादों की गुणवत्ता, मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मानसून की बदलती स्थिति और अल नीनो के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंगा, कुल्हान और पुराहट वन विभाग को पुनः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्तुपोटा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। आज राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 1908 में आज के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani, the news read by Indu Chuku. The Lok Sabha has passed the Kerala Alternation of Name, Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first Schedule of the Constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. Union Cabinet in February this year

0: दोस्तों आप सब सुन रहे थे नोक्ते समाचार। अगर आप हमारे नोक्ते श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, जी हाँ, मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, वक्त हो चला है आप सभी का मन पसंदीदा प्रोग्राम इवनिंग ड्राइव का, लेकिन इससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर ब्रेक। आप सब बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को ₹50,000, राज्य स्तर पर ₹2,00,000 और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर ₹5,00,000 तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माई वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
4: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। जी हाँ, सावन आ चुका है। इवनिंग ड्राइव में आज हम सावन के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत प्यारे प्यारे गीतों को मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ।

तो स्वागत करते हुए आप सभी का सावन के महीने में और इवनिंग ड्राइव में, दोनों में दोस्तों। जहां सावन में रिमझिम रिमझिम फुहारों के बीच पुराने यादें ताजा होती है, तो ऐसे में कुछ जो है खास होने लगता है। हमारे पूरे भारत में, मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया में, सावन को बहुत ही एक तो ऑस्पिशियस महीना मानते ही है, मगर इसे जो है झूले, हरे हरे कांच की चिड़िया, हरा सारी हरी बिंदी, सब कुछ हरा। और सावन में आप देखिए ना, एनवायरमेंट भी कितना जो है, यानी कि वातावरण भी हरियाली हरियाली हो जाती है। तो ऐसे में एक छोटी सी प्यार भरी कहानी आप सभी के लिए है मेरे पास दोस्तों। शादी के बाद पहला हरियाली तीज की स्मृति आज भी मेरे मन में है और मुझे कहीं ना कहीं गुदगुदा देती है। यूं तो हमारे यहाँ भादों में मनाए जाने वाले हरतालिका तीज मनाई जाती है, लेकिन सावन का कुछ खास ही है। जी हाँ, शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति जो है वो फौज में थे, और फौजी होने के नाते देश की सेवा में हाजिर होने के लिए मुझसे दूर चले गए, लेकिन पल पल भर भी उनकी मायूसी घर में छाई नहीं रही। जी हाँ, तो मैं बात करूंगी आज सावन के बारे में। वैसे सावन का इंतजार सभी को तो रहता है, इसलिए तो हम कहते हैं कि सावन को आने तो दो, है ना। तो दोस्तों, गीतों के बीच प्यार भरा कहानी जो है आप सभी के लिए है। एंजॉय कीजिए सबसे पहले इस प्यार भरे गीत को।

सासू माँ, ससुर जी, जेठ जेठानी और ननद, भरपूर घर परिवार था। जी हाँ, कैसे दिन निकल जाता, कब सुबह होती और कैसे दिन निकल जाता पता ही नहीं चलता। रात होते होते नींद आ जाती और सो जाती, न मायके की याद आती और ना ही परदेसी पिया की। जी हाँ दोस्तों, जब हरियाली तीज का दिन आया तो सासू माँ ने खूब जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी। आंगन पर दलान की लिपा पोती की गई, झूले लगाए गए, फूलों से सजाई गई और पकवान भी बनाए गए। मेरे हाथों में मेहंदी लगाई गई, ससुर जी बाजार से हरे रंग की साड़ी, बिंदी और कांच की चुड़िया लेके आए। फिर क्या होता है मैं बताती हूँ आगे आगे। आप सब बने रहे अरुण एफएम के साथ, सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: जी हाँ दोस्तों, ससुर जी बाजार से हरे रंग की साड़ी, बिंदी और कांच की ढेर सारी चुड़िया लेकर आए। शाम होते ही सबने मुझे 16 श्रृंगार कराया। सज धज कर मैंने आईना देखा, अरे वाह, मैं तो खुद पर मोहित होने लगी। मैं कितनी खूबसूरत लग रही थी। सासू माँ, जेठानी, ननद और जेठानी के सभी बच्चे मिलकर बड़े उत्साह से झूले तक पहुंची, बड़े मधुर गीत गाए जाने लगे। मगर झूले पर बैठते ही मेरी सारी खुशियां उड़ गई। सावन के झूले तो पड़े मगर साजन नदारद थे।
1: शिमारू के

साजन तो कहीं बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे अपनी दुल्हन को भूलकर। हाँ, फर्ज भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सुनते हैं इस प्यार भरे गीत को जो मैंने खासकर आपके लिए चुना है।

इतनी तरह से 16 श्रृंगार करके भी मैं कहीं खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे रह रह के उनकी याद आ रही थी। लगता था जैसे सब कुछ अधूरा अधूरा सा है। मैं इतनी सजी सवारी क्यों हूँ, देखने वाला जो है वो तो कहीं दूर है। लेकिन जी हाँ, मेरे सासू माँ ने इसे भाप लिया। बड़े नज़ाकत से मुझे इस मौके के नज़ाकत को समझते हुए मुझे बहलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, देखो पहले साल जो है झूलने का रिवाज ननद के साथ है, यानी कि अपने पति के बहन के साथ है, और फिर अगले साल से अपने पति के साथ झूलना जो है हमारे नियम में होता है। तो आज्ञाकारी बहू की तरह मैंने उनकी बात मान ली और छोटी ननद के साथ झूला झूली। उस वक्त मुझे समझ भी नहीं आया कि उन्होंने मेरे दिल को रखने के लिए, मुझे मायूस ना होने के लिए, मेरे दिल को मायूसी से बचाने के लिए मुझसे ये जो है एक तरीका ढूंढ के उन्हें नियम में बांध दिया। आज उसके बाद 25 बार मैं अपने पति और बच्चों के साथ झूला झूली हूँ, लेकिन पहले सावन के झूले आज भी मेरे मन को गुदगुदाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए एंजॉय करवा देते हैं आप सभी को एक झूमता हुआ गीत के साथ। एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारे आज की इवनिंग ड्राइव का ये सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारे इस सेगमेंट पे पेश किए गए सभी नजराने तथा मैंने जो स्टोरी आप सभी को सुनाई थी, जो कि मेरी स्टोरी बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, वो तो मैंने कहीं से जो है मैंने सुनी थी, मैंने आप सभी को सुनाई। और वाकई में बहुत लोग होते भी हैं, ऐसे भी होते हैं स्पेशली फौज में काम करने वाले, जो कि हर वक्त जो है घर जा नहीं पाते, हर ओकेशन में घर नहीं जा पाते, तो उनकी जो वाइफ्स होती है, उनकी जो पत्नियां, उनके जो पत्नी होते हैं, हमारे फौजी भाइयों के जो पत्नी होते हैं, वो सब अफसोस मनाते रहती है। खैर कोई बात नहीं, बहनों देश के लिए सेवा में गए हैं, आपके पति जो है जब आए तब आप दीपावली, होली, दीपावली, सावन, दशहरा सब एक ही साथ मना लेना। बहरहाल हम ले लेते हैं इस प्रोग्राम से एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद दोस्तों शाम की महफिल में। तो आप सब बने रहे अरुण एफएम के साथ, सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
4: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
5: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को ₹50,000, राज्य स्तर पर ₹2,00,000 और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर ₹5,00,000 तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
0: एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले ही कहा कि सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में तो सावन के ही बारे में बातें हम करेंगे। वैसे शाम की महफिल है अभी, इस सेगमेंट जो है वो शाम की महफिल को जाता है और शाम की महफिल में सावन अपना धूम ना मचाए, ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों। शाम की महफिल में सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत कर लेती हूँ। जी हाँ, क्योंकि आपके शाम को खास बनाने का हम वादा जो करते हैं दोस्तों। हो सकता है कि अब इस वक्त आप में से काफी लोग या तो घर पहुंचने वाले हैं या घर पहुंच चुके हैं या फिर घर पहुंचकर रिलैक्स हो रहे हैं, और जो है ये भी हो सकता है आपके शहर में बारिश की बूंदाबांदी हो रही है, क्योंकि सावन का महीना जो है, ये भी हो सकता है कि गर्मी से आपका बुरा हाल तो है। वैसे कहे भी तो क्या कहे, क्योंकि सावन का महीना है, वर्षा ऋतु का सबसे सुहावना महीना इसे माना जाता है। इस महीने में चारों ओर हरियाली छा जाती है और पेड़ पौधे नए नए पत्तों से भर जाते हैं। बारिश की ठंडी फुहारे वातावरण को मनमोहक बना देती है। जी हाँ दोस्तों, और जो है गांव में तो झूले भी पड़ चुके हैं, महिलाएं सावन के गीत गाती है, किसान भी अच्छी बारिश से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये वर्षा जो है फसलों को पर्याप्त पानी देती है। जी हाँ, और जो है हरे हरे चूड़ियों के साथ, हरे बिंदी, हरे साड़ियां और हरे कलर्स के साथ प्रकृति ऐसे लगता है कि चारों ओर हरियाली ही बिखर रही हो। तो ऐसे में आज की शाम को हम डेडिकेट कर देते हैं आप सभी के नाम, सुनवा देते हैं कुछ प्यार भरे गीत। वैसे अगर आप इस वक्त किसी खास को याद कर रहे हो सावन के इस महीने में और पल पल आप उनको याद करके अपने दिल की बात कहना चाहते हो, तो ये गीत तो बिल्कुल आप ही के लिए है। एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स।

0: दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत सी गीत के साथ ही हमारी आज की शाम की महफिल अब यहीं पर संपन्न होती है। हम ये उम्मीद रखते हैं फ्रेंड्स कि आपके आज के इस शाम को खास बनाने में हम कामयाब तो हुए होंगे। आप इस प्रोग्राम को सुन रहे थे FM बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण FM से। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, तो अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे धुआंधार हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। तो बने रहे अरुण FM के साथ, तो सुनते रहे अरुण FM को।
1: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स OTT ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2

2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स OTT ऐप के माई वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

वेलकम बैक, शुभ संध्या। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को शुभ संध्या। आप बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम पर। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ फ्रेंड्स, दोस्तों शाम का समय दिन भर की भागदौड़ के बाद सुकून और शांति लेकर आता है। डूबते हुए सूरज की सुनहरी किरणें आसमान को लाल, नारंगी और गुलाबी रंगों से सजा देती है। ठंडी ठंडी हवा मन को ताजगी से भर देती है और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को और भी सुंदर बना देती है। ऐसे लगता है जैसे प्रकृति पूरे दिन की थकान मिटाकर हमें कुछ पल अपने साथ बिताने का निमंत्रण दे रही हो। शाम का ये शांत और मनमोहक दृश्य दिल को सुकून देता है और हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस कराना सिखाता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं कुछ प्यारे प्यारे धुआंदार गीत, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप झूम जाएं और झूमते हुए आप हमारे गीतों को सुने और बिल्कुल तरोताजा हो जाएं। एंजॉय कीजिए।

Then,

0: दोस्तों आप सुन रहे थे आदि समाचार। अगर आप हमारे आदि श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स मीडियम वेव के 444.4 मीटर में यानी कि 675 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलोहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर या आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। दोस्तों वक्त हो चला है आज के कलाकार के इस सेगमेंट का, लेकिन इससे पहले हम ले लेते हैं एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर ब्रेक। आप सब बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
2: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। जी हाँ, आज के कलाकार के सेगमेंट में आज हम एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करेंगे जो कि जी हाँ दोस्तों किसी भी परिचय की मोहताज तो बिल्कुल नहीं है। हिंदी सिनेमा की मशहूर और मारूफ अभिनेत्री जिनका नाम रखा गया था फातिमा राशिफ, फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें नाम दिया नरगिस। नरगिस का जन्म जो है 1 जून 1929 को हुआ था और मात्र 6 साल की उम्र में नरगिस बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और जो है 14 ईयर्स के होते होते महबूब खान साहब ने उन्हें फिल्म तकदीर में बतौर हीरोइन के रूप में काम पे ले लिया। तो चलिए नरगिस के बारे में बातें करेंगे और भी, लेकिन हो जाए कुछ गीत उनके फिल्मों से।

दोस्तों, इनकी जोड़ी जो है दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ खूब जमी, और राज कपूर के साथ तो बहुत ज्यादा फिल्में इन्होंने की। लेकिन राज कपूर के साथ ये भी एक कहा जाता है कि इनके साथ राज कपूर का वो ऑन स्क्रीन रिलेशनशिप था जो कि देख के लोग कहा करते थे शायद रियल लाइफ में भी इनकी जोड़ी बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो है राज कपूर ने सीधे तौर पे कह दिया कि ऑन स्क्रीन रियल लाइफ अलग होती है, रियल लाइफ अलग होती है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बातें करते हैं नरगिस के बारे में, और भी एक और गीत मैं आप सभी को सुना दूं, एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, जहां नरगिस बतौर हीरोइन बॉलीवुड में पांव जमा चुकी थी, वहीं महबूब खान एक बड़ी फिल्म की प्लान कर रहे थे। वो फिल्म का जो नाम है वो थी मदर इंडिया। इन्होंने माँ का किरदार इसमें ऐसा निभाया जिसमें जवानी से लेकर बुढ़ापे की पूरी कहानी थी, जिसे नरगिस जी ने बखूबी निभाया। इस फिल्म के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। एक किस्सा ये भी है कि बिरजू का किरदार जिसे सुनील दत्त ने निभाया था, उसे दिलीप कुमार निभाने वाले थे, लेकिन दिलीप कुमार ने ये कह के मना कर दिया कि ये कैसे हो सकता है कि पूरे फिल्म में मैं नरगिस को माँ माँ कह के बुलाऊं। तो चलिए बातें करेंगे और भी, लेकिन इससे पहले हो जाए एक और गीत। आएगा तुम आएगा, हाँ आएगा, तुमको बहुत खुजली है ना रे। आज अगर हम तुमको देख, शशिभूषण, तुम्हारे जैसे ना नीच इंसान इस लाइफ में नहीं देखा मैंने, नीच इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। छी, लाना थे मेरा ऊपर में जो हम तुमको देखने के लिए मारा जाता है। जा नहीं देखेगा तेरा सूरत, जा।

फिल्म में नरगिस ने बखूबी से जो है राज कपूर के साथ बहुत ही उम्दा एक्ट किया। आप फिर से दोबारा इस गीत को बहुत तहे दिल से सुनिएगा दोस्तों, केवल आप सभी के लिए।

एक और किस्सा ये भी है कि जिस बिरजू के लिए इतना बातें हुआ कि बिरजू का किरदार किसे मिले किसे नहीं, तो आखिर ये आया सुनील दत्त के हिस्से में। और कहा जाता है कि कौन जानता था कि ये बिरजू, जिसे जिसने मदर इंडिया में पूरे फिल्म में माँ माँ कह के नरगिस को उसने बुलाया, ये वही बिरजू जो है एक दिन, जी हाँ दोस्तों, वो एक दिन नरगिस की जीवन साथी बन जाएगा। माना तो ये भी जाता है कि मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान जो है सेट पर भयंकर आग लग गई थी और सुनील दत्त ने नरगिस को बचाया था और दोनों करीब आने लगे। 1958 11 मार्च को दोनों शादी के परिणय सूत्र में बंध गए। शादी के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया और राज्यसभा की मेंबर्स बन गए, यानी कि एमपी बन गई। इनका सफर यही थम गया क्योंकि इन्हें एक जानलेवा बीमारी हो गई और जो है नरगिस, जो इतनी ही सुपर डुपर हिट फिल्में इन्होंने दी थी, वो दुनिया को अलविदा कह गई। नरगिस को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये प्यार भरा नगमा आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहद पसंद आने को है।

0: और अब आप आनंद उठा पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों के साथ।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
3: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

0: बाबा जो है और श्री कालेश्वर बाबा ने मेरा फरमाइश पूरा किया,
1: जी
0: आपसे
1: उनके
0: मेरा बातचीत कराई दिया
1: जी
0: है ना।
1: उनकी कृपा से आपका फोन लग गया।
0: जी जी जी
1: जी
0: तो
1: हाँ साहब
0: मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ।
1: जी हाँ
0: मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर,

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते सर।
0: नमस्ते। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात करने का आज बहुत दिनों के बाद मौका मिला।
0: जी चलिए, कोई बात नहीं, आपने बहुत दिनों के बाद ही सही हमें याद किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
1: संगीता देवनाथ बोल रही हूँ।
0: जी संगीता देवनाथ जी, सही में आपने बहुत दिनों के बाद कॉल किया हमें। जी और
1: सर आप कैसे हो सर?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हो, आपका परिवार कैसा है?
1: जी मैं भी अच्छी हूँ और मेरा परिवार के सभी सदस्य बहुत अच्छे।
0: जी हमेशा आप सभी ऐसा ही खुश रहे, अच्छा रहे, हम यही भोलेनाथ से दुआ करते हैं। जी
1: सर मुझे आज एक गाना सुनना है, फिल्म का नाम है जुर्माना और गाने का बोल है सावन की धुनें पड़े।
0: ओके। हाँ जी जरूर सुनाएंगे, और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे?
1: जी पहले सर आपको
0: थैंक यू। हाँ जी
1: और अविनाश भैया, प्रभुजीत चक्रवर्ती जी और मेरा हस्बैंड आशुतोष जी, भगवान भैया, केसरी भैया और जितने भी अभी सुन रही है सबको लेके सुनना।
0: सभी को आप सुनाना चाहते हैं। जी तो संगीता जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से आगे भी कॉल करते रहेगा।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, गांव अकबरपुर, तहसील सिवान, जिला विदिशा मध्य प्रदेश से।
0: जी हारून साहब, काफी दिनों के बाद आपने कॉल किया।
1: जी क्या है, दूसरों को भी मौका भी देना पड़ता है ना।
0: क्या बात है, क्या बात है जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और सुनाइए, आप कैसे हो?
1: बस बहुत अच्छे हैं। और आपके मिजाज कैसे हैं?
0: जी हमारा मिजाज बहुत ही बेहतरीन है।
1: और आपके इधर बारिश कैसी हो रही है ईटानगर में?
0: जी बारिश हाँ लगातार हो रही, लेकिन अभी फिलहाल तो धूप खिला हुआ है, रात को अच्छा। बारिश हुई थी
1: जी, जी, जी।
0: और आपके वहाँ का मौसम का मिजाज कैसा है?
1: बस हमारे इधर से भी एक दो दिन से बारिश हो रही है।
0: अच्छा, तब तो बहुत ही बढ़िया मौसम होगा।
1: जी मौसम अच्छा है, लेकिन 10 रोज से बारिश नहीं हो रही थी, अब लेकिन कल परसों से बारिश हो रही है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी
1: जी
0: जी। तो इस बढ़िया मौसम में हारून साहब कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है गोपी के चंद।
0: हाँ जी,
1: गाने के बोल रहे हैं छतरी ना खोल बरसात।
0: ओके जी, हाँ जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो आप हैं पुरुषोत्तम कुमार हैं, राकेश हैं, रोकित वर्मा हैं, मांगीलाल हैं, गजरा रोधी हैं, भगवान सिंह, परमा सिंह हैं, और जो श्रोता सुन रहे हैं ईटानगर में, सभी के लिए रहेगा।
0: ओके तो हारून साहब इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए, हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मानवर, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद
0: प्रजापति
1: मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी शारदा प्रसाद जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप? आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। आप लोगों से वार्तालाप करके बहुत ही सुखद अनुभूत करता हूँ। और आकाशवाणी ईटानगर से जब मेरा फोन लगता है और आदरणीय वागरा साहब से वार्तालाप होती है तो फिर दिल तो बाग बाग हो जाता है। मथुरा वृंदावन में तो इस वक्त चमचमाती हुई धूप है और गर्म वातावरण है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि दो तीन दिन से बारिश नहीं हुई है। और अगर कल परसों हुई थी थोड़े से छिटपिट छिटपिट, मतलब बौछारें पड़ी थी, लेकिन धरती अच्छी गीली नहीं हुई थी।
0: अच्छा, जो बारिश आप लोगों को चाहिए था वो अभी तक हुई नहीं?
1: जी नहीं, ऐसा लग नहीं रहा कि ये सावन का महीना है, ऐसा लगता है कि ये बैसाख का महीना आ गया है।
0: ओहो हो, जी आशा करते हैं जल्दी आपके वहाँ झमाझम बारिश हो।
1: जी जी, स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद।
0: जी
1: और हम तो इंतजार कर रहे हैं बारिश का कि आ जाए और झमाझम बारिश हो जाए, धरती ठंडी हो जाए, वातावरण ठंडा हो जाए।
0: जी बिल्कुल, इंतजार का फल मीठा होता है और वो मीठा फल जल्दी आए, हम यही दुआ करते हैं।
1: बस हम भी यही अपेक्षा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, देवों के देव महादेव से, कि सावन के महीने में कम से कम गंगा मैया की तरह यहाँ भी लहरें उठें और झमाझम बारिश हो और हम बारिश से इस तरह बोर हो जाएं, आनंद की अनुभूत करें।
0: क्या बात है, क्या बात है। जी जी जी, तो जल्दी बारिश हो हम यही दुआ करते हैं। और कहिए, आज हम आपको कौन सा फिल्म का गीत सुनाएं शारदा प्रसाद?
1: सर्वप्रथम मैं आपको आकाशवाणी ईटानगर को और सभी श्रोताओं को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। हमारा स्वाधीनता स्वतंत्रता अमर रहे और हम स्वतंत्र भारत के नागरिक बने रहें, यही शुभकामना करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और अब
1: आज

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर।
1: जी सर नमस्ते, मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी हमारी ओर से।
1: जी जी सर, कैसे हो?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप कैसे हो सुनाइए।
1: जी सर मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और सर बिल्कुल वहाँ का मौसम कैसा है?
0: हाँ रात को तो बारिश हो रहा था लेकिन अभी धूप खिला हुआ है।
1: जी, हमारा यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो रहा है यार।
0: अच्छा अभी बारिश बंद हो गया था।
1: हाँ बारिश बंद हो गया।
0: ओके ओके जी, चलिए कोई बात नहीं, अभी कुछ ही दिनों के बाद तो ठंडा महीना आ जाएगा।
1: जी,
0: हाँ जी, तो आप अपना परिचय दे दीजिए।
1: सर मैं हरद्वारा बात कर रहा हूँ, विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गोपुर असम से।
0: जी हरद्वारा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, और आप बहुत ही अच्छा हिंदी बोलते हैं।
1: जी सर,
0: जी
1: थोड़ा थोड़ा बात करना सीखता हूँ।
0: जी सीखना चाहिए जरूर, और आकाशवाणी से बात करने से आपको और भी ज्यादा नॉलेज मिलेगा, है कि नहीं।
1: जी सर, और सर आपने भी इतना आसामी अच्छा से बोलता है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा, जी, हाँ मैं कोशिश करता हूँ, असमिया, बंगाली, नेपाली, ये सब भाषा में थोड़ा
1: जी,
0: थोड़ा बोलता हूँ। जी तो हरिद्वारा जी कहिए, आज कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे।
1: सर एलओसी कारगिल फिल्म से कोई भी गाना बजा दीजिए।
0: एलओसी कारगिल फिल्म से ना।
1: जी जी जी
0: ओके, और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इसकी।

0: हेलो, फरमाइश।
1: सर जी, जय श्री महाकाल।
0: जी, जय श्री महाकाल।
1: सर जी, आपका नियमित श्रोता शिवा लोहट MP विदिशा से।

0: हेलो
1: हेलो सर, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, हेलो, फरमाइश।
1: मैं गोलाघाट कैसी रमेश पात्र।
0: रमेश पात्र, हाँ, कॉल करार कारण बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हैं आप? मैं
1: भले हूं।
0: भले हैं ना?
1: ओके। आप कैसे
0: हैं? मैं भी खूब भाल।
1: भाल से बात कर रहा
0: हूं। हाँ हाँ हाँ।
1: मैं आज गान सुनने को विचार रही हूं, नमक हलाल।
0: नमक हलाल, ओके।
1: पगल घुंघर बाजे बिना नाची सी।
0: ओके, जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे?
1: और सुनेगा पहले आप।
0: थैंक यू। हाँ जी,
1: मेरा श्रीमती है रुनु पात्र। और है साथी बाइकन मुंडा, अमल बसुमतारी, विमल बसुमतारी, देवासी हजरिका, योगेंद्र रंगी, और रुको बेले मेथा, और रमेश प्रजापति, भगवान सिंह परमार, शिवा लोहार, पूरण वर्मा, और प्रेमजीत चक्रवर्ती, जितेंद्र दास, और सभी लिस्टनर्स को ये गाना सुनाना चाहता हूँ।
0: ओके, तो रमेश दा, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मेरा शुभ नाम है देवजीत दास और मेरा गांव का नाम है बद्रीपुर, डिस्ट्रिक्ट असम से।
0: जी, असम से देवजीत दा। और कैसे हो देवजीत दा?
1: बहुत बढ़िया हो, आप
0: बढ़िया
1: कैसे?
0: हो? जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। जी
1: আর আপনাদের ওখানে আজকে আবহাওয়াটা কেমন হচ্ছে?
0: এখানে রাত্রেবেলা বৃষ্টি পড়েছিল, কিন্তু এখন ধূপ খিলতা আছে।
1: না,
0: জি
1: আমাদের ওখানে আজকে অনেক গরম হচ্ছে লাগছে।
0: গরম না?
1: হ্যাঁ, তো মে আজ গানা শোনা চাও।
0: জি দেবজিৎ দা,
1: সেদিনকা নাম আশিকি,
0: আশিকি। হুম হুম
1: গানেটা বলে সাসতি জরুরত দেশে।
0: হুম ওকে
1: মে কোচে দো লাইন মে আপকো সুনাউঙ্গা।
0: জি জি বিলকুল।
1: দিল কে পাশ আপকা ঘর বনা লিয়া, খাবো মে আপকো বসা লিয়া, মত পুছো কিতনা চাহতে, হার সবকো আচ্ছা বনা লিয়া।
0: ক্যা বাত হ্যায়।
1: তো
0: জি
1: তো মে মে তো আজ বহুত হি আচ্ছা লাগ রা হ্যায় আপকে সাথ বাতে হুয়া।
0: জি, বহুত হি আচ্ছা লাগ রা হ্যায় হামে ভি। और देवजीत दा, इस गीत को किन लोगों को आप डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: पहले मेरा ये गीत मेरे परिवार में सुनेगा। मेरा पिताजी है जितेंद्र कुमार दास और माताजी है शिल्पी रानी दास, बड़े भैया जोजीत दास, और आपके लिए सर गाना भी। और ये गाना कुछ मैं दोस्तों को सर डेडिकेट करूंगा।
0: हाँ जी हाँ
1: मेरे
0: जी।
1: मेरे आसाम से है, मेरे बड़े भाई है अनु कुमार भट्टाचार्य, और दीदी है छोटोबा भट्टाचार्य जी, और रामतो भाई, और बापन दादा है प्रेमजी दादा, और दादा है राजा मलाकार, दादा है जवाहरलाल बर्मन। और अभी जो आकाशवाणी ईटानगर में सुनते हैं, सारे श्रोताओं के लिए गाना डेडिकेट करूंगा।
0: ओके
1: और मैं तो आसाम में व्यस्तता हूँ, इसलिए मैं काफी दिनों के बाद आपसे बातें हो रहा है।
0: अच्छा जी जी जी जी तो देवजीत दा, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके पसंद के गाना सुना रहे हैं।
1: नमस्कार।

दोस्तों अभी आप सब आनंद उठा रहे थे हेलो फरमाइश प्रोग्राम के साथ, और अब आप आनंद उठा पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: Pare Hydropower Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
1: Attention! Pare Hydro Power Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

दोस्तों, अभी आप आनंद उठा रहे थे हिंदी फिल्मी गीतों के साथ, और अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे वेस्टर्न मेलोडीज के साथ। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: दोस्तों, अभी आप आनंद उठा रहे थे पाश्चात्य संगीत के कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज के साथ FM बैंड के 103.1 MHz पर, ये आकाशवाणी का अरुण FM है। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM, अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, अब से बस कुछ ही पल में, जी हाँ कुछ ही पल में आप सब आनंद उठा पाएंगे भूले बिसरे गीतों के सेगमेंट के साथ। तो बने रहे अरुण FM के साथ और सुनते रहे अरुण FM को।
1: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स OTT ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स OTT ऐप के माई वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। जी हाँ, भूले बिस्तरे गीतों के सेगमेंट में, या भले ही भूले बिस्तरे गीत क्यों ना हो, लेकिन होते हैं सराबा नगमों का कारवा, जिन्हें हम अक्सर अपने होठों पर गुनगुनाना बेहद पसंद करते हैं। ये वो गीत है जो कि इंस्टा और फेसबुक की अब तक शोभा बढ़ा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए इस कारवा को शुरू करते हैं बहुत ही प्यारा सा नगमे के साथ। कभी कभी कुछ बातें हम सामने से नहीं कह पाते, दिल की गहराइयों में छुपी भावना है जो शब्दों का सहारा लेती है तो वो खत बन जाती है, और जब उस खत में किसी अपने की याद, इंतजार और प्यार शामिल हो तो हर लफ्ज एक खूबसूरत एहसास बन जाता है। तो चलिए इस प्यार भरे नगमे का आनंद उठाइए।

0: कोई मीठी सी याद सब मिलकर एक ऐसा समा बना देते हैं जिसे बस महसूस ही किया जा सकता है ना। तो कुछ ऐसे ही खुशनुमा एहसासों से भरा है आज का ये नगमा, एक ऐसा गीत जिसमें शाम की रौनक भी है, प्यार की मिठास भी है और बीते लम्हों के खूबसूरत यादें भी हैं। तो इंतजार किस बात की, बिल्कुल एंजॉय कीजिए।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई

दोस्तों मिस्टर नटवर लाल के इस बेहद खूबसूरत और रोमांटिक गीत के साथ ही हमारे आज के भूले बिस्तरे गीतों का सेगमेंट अब यही संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि हमारे आज के इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। दोस्तों आप आनंद उठा रहे थे FM बैंड के 103.1 MHz पर, यानी कि आकाशवाणी के अरुण FM को, जो कि करता है दिल से दिल की बात और पहुंचा देता है आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। बहरहाल दोस्तों चलते चलते वक्त हो चला है कि हम आप सभी से अलविदा कहें। हम ये उम्मीद रखते हैं फ्रेंड्स कि आपको हमारे आज के इस तीसरे प्रसारण सेवा में पेश किए गए सभी कार्यक्रम बेहद पसंद आए होंगे। इन्हीं तरह के तमाम ज्ञानवर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों को लेकर हम आप सभी के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो जाएंगे कल सुबह के ठीक 5:48 पर। कल का सवेरा आपके जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सेहतमंद रहे और जी हाँ दोस्तों अरुण FM को सुनना ना भूले। और वो कहते हैं ना कि अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। इन्हीं जो शब्द है, ये जो शब्द है बहुत ही कीमती शब्द है दोस्तों, हमें इसे जीवन में उतार लेना चाहिए इसी उम्मीद के साथ कि कल का सवेरा आपके जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आपके दरवाजे पे दस्तक देगा और आप अपना भरपूर ख्याल रखेंगे। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ संचार निष्पादक गई रहती, तकनीकी अभियंता ताना आतुम तथा स्टूडियो और HPTV में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सभी की अपनी आज अपर्णा को रुखसत होने की दीजिए आप सभी से इजाजत। लेकिन चलते चलते हम यही कहेंगे कि आगे के कार्यक्रमों के लिए बने रहे आप सब FM गोल्ड चैनल पर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। जी हाँ, और हम ले लेते हैं अब अलविदा। बहुत जल्द मिलते हैं कल सुबह के ठीक

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री आवास योजना से बदलती शहरी आवास की तस्वीर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य किरीट एस पारेख। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: डॉक्टर पारिक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पारिक, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा मकान स्वीकृत हुए हैं और 1 करोड़ से ज्यादा मकान पूरे भी हो चुके हैं। अगर इनिशियली हम देखें तो वर्ष 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक शहरी आवास की तस्वीर में काफी बदलाव आया है, तो आपके विचार में इस उपलब्धि को आप किस तरह से देखते हैं? इसका सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव जो था वो क्या था?
2: देखिए, पक्का हाउस मिलना ये सबके लिए बहुत जरूरी बात है। अब जब हम क्लाइमेट चेंज के का प्रभाव देख रहे हैं, हीट वेव्स बढ़ रहा है, ये सब के जरिए हैविंग ए शेल्टर, एक अच्छा मकान होना एक जरूरी बात है। लेकिन एक दृष्टि ये देखिए तो जो सबको न पक्का मकान अर्बन एरिया में देना, वो टारगेट था 2022 का। इसमें दो बहुत बहुत प्रगति हुई है, फिर भी टारगेट से हम दूर है। फिर भी जितना हुआ है इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज होती है। घर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अंदर रहने से, आबोहवा से, गर्मी से आपको राहत मिले। अरे इसके लिए हमको पक्का मकान की जरूरत है। लेकिन पक्का मकान की एक और भी बात है जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए।
1: जी
2: गरीब लोग को एक पक्का मकान अपना होना एक बहुत इज्जत की बात होती है, जो सोसाइटी में, समाज में उनका महत्व बढ़ता है और लोग समझते हैं कि अच्छा है, इनके पास एक घर तो अपना है। और इसके असर काफी होती है, क्योंकि लड़के के लिए अच्छी बहू और लड़की के लिए अच्छा घर मिल सकता है उनके एक्सचेंज में।
1: जी
2: तो ये सब मेरे ख्याल से बहुत अगत्य की बात थी कि ऐसा पीएम आवास योजना अर्बन में ऐसी सुंदर घोषणा की सरकार ने।
1: पारिक जी, आज की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का जो दूसरा चरण है 2.0, तो जाहिर सी बात है इसे पिछली योजना के अनुभवों से सीख लेकर तैयार किया गया है और अगले 5 वर्षों में शहरी परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने को विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। तो अभी स्थितियों में अगर देखें तो किस तरह का बदलाव लाया गया है और किस तरह से जो चुनौतियां भी सामने आई उनको दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं?
2: बात यही सच है कि पहले चरण में हमने लगभग 1 करोड़ लोग को आवास दिया है,
1: जी
2: और अगर हम दूसरे चरण में ऐसी प्रगति करें तो भी काफी होगी। बट इससे भी अच्छा कोई कर सके तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मेरा ख्याल से इसमें क्या हुआ है कि सडनली जो सब्सिडी दे रहे वो कैसे मिलनी चाहिए, ये सब आसानी से हो गया है। तो पहले से इससे ब्यूरोक्रेसी इसकी कम हुई है, यानी इसकी जरूर असर होगी कि कभी लोगों को पहले से एप्लीकेशन किया लेकिन उनको मिला नहीं, लेकिन आज बहुत सा अप्रूवल हो गया है
1: जी
2: और काफी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट किया गया है। तो अगत्य की चीज ये है कि बस हम ये प्रोग्राम जारी रखें जब तक पूरा ध्येय हासिल न हुए, और ध्येय हासिल करने के लिए जितने ताकत, जोर और पैसे लगाने चाहिए।
1: परीक जी, अभी जो 6 अगस्त को बैठक हुई जिसमें केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक हुई थी, इसमें 2 लाख से अधिक नए मकानों को मंजूरी दी गई है और ये भी कहा गया कि 1,42,000 मकान लाभार्थी आधारित निर्माण और 67,000 से अधिक मकान जो है वो साझेदारी में किफायती आवास के तहत बनाए जा रहे हैं। तो ये जो 2 मॉडल रखे गए हैं तो इनका लाभ किस तरह के परिवारों को मिलता है और जिन परिवारों के पास अपनी जमीन है या फिर अपनी जमीन जिनके पास नहीं है उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं इन योजनाओं से?
2: इसमें बहुत से पहलू है। एक तो छते स्लम क्लियरेंस है, स्लम डेवलपमेंट। इसमें तो जे वहां रहते हैं स्लम ऑफिशियल स्लम रेसिडेंट है, सबको मकान मिलने वाला है। ज्यादातर मकान देने में प्रॉब्लम ये होती है कि जमीन नहीं मिलती है,
1: जी
2: लेकिन इसमें से जमीन मिल रही उनको मिल जाएगी। दूसरा पहलू ये है कि सरकार जिसके पास जमीन है अपनी उनको भी मदद करती है, और जिसके पास पुराना घर है उनको अपग्रेड करना चाहे इसके भी मदद होती है, और प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लेने के लिए उन्होंने अलग अलग स्कीम बनाई है। तो मेरा ख्याल से ये सब स्कीमों हैं 5-6 अलग अलग तरीके के, इससे नॉट ओनली ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन बट ऑल्सो मिडल और अपर मिडल को भी फायदा होगा। एंड इसका जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन की बात करें, जिसको हमको मदद करते हैं वो धीरे धीरे उनके साथ जो दूसरे को मदद नहीं होती है इसके ऊपर वाले थोड़े, तो इनको होता है कि ये सब गलत हो रहा है, ये सब हमको क्यों नहीं। मेरे ख्याल से जरा कॉम्प्रहेंसिव विचार करके प्रोग्राम बनाया गया है।
1: आइए सुनते हैं पीएम आवास योजना पर ये विशेष रिपोर्ट। देश के शहरों में बिना पक्के मकान के रहने वाले परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एक बड़ी पहल रही है। इस योजना के तहत अब तक 1.25 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें 1 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। महिलाओं को घर के स्वामित्व में भागीदारी देकर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करना भी इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। इस योजना के दोनों चरणों के तहत मंजूर घरों में से लगभग 1 करोड़ घर महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। ये घर परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 25 जून 2015 से लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले और सभी मौसम में सुरक्षित पक्के घर उपलब्ध कराना है। योजना के दौरान मिले अनुभवों के आधार पर इसे आगे बढ़ाते हुए 1 सितंबर 2024 से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 शुरू की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण को 4 श्रेणियों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इनमें लाभार्थी द्वारा निर्माण, साझेदारी में आवास निर्माण, किफायती किराए का आवास और ब्याज सब्सिडी योजना शामिल है। बीते सप्ताह 6 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 8वीं बैठक हुई। बैठक में विभिन्न राज्यों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए 2.09 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई। इनमें लगभग 1.42 लाख घर लाभार्थी द्वारा निर्माण श्रेणी के तहत हैं। इस श्रेणी में लाभार्थियों को अपनी जमीन पर पक्का मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता दी जाती है। वहीं 67,045 घर साझेदारी में आवास निर्माण श्रेणी के तहत हैं। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में सार्वजनिक और निजी एजेंसियां किफायती आवास परियोजनाएं विकसित करती हैं और पात्र लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एक मांग आधारित योजना है, यानी लाभार्थियों के आवेदन के बाद मांग का आकलन, परियोजनाओं का निर्माण और लाभार्थियों का चयन संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार योजना की प्रगति की निगरानी करती है और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर मंजूर घरों को तय समय में पूरा करने पर जोर देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने पिछले वर्षों में शहरी परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब 1 करोड़ से अधिक घरों के पूरा होने के बाद अगली चुनौती मंजूर घरों को समय पर पूरा करना और दूसरे चरण के तहत तय किए गए 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र परिवारों तक सहायता पहुंचाना है। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला। फारूक जी, इस योजना में महिलाओं के नाम पर या फिर संयुक्त स्वामित्व में मकान देने को विशेष प्राथमिकता दी गई, यानी कि अगर किसी महिला को मकान दिया जा रहा है तो उसे विशेष प्राथमिकता मिलेगी। तो कुल जो 1.25 करोड़ स्वीकृत मकान है, इसमें लगभग 1 करोड़ मकान जो है महिलाओं के नाम या फिर संयुक्त स्वामित्व में है। तो इस तरह का जो फैसला है, ये महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भूमिका में किस तरह से बदलाव आपको बताता है, किस तरह से दिखाता है कि अब महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भागीदारी बदल रही है?
2: महिलाओं को जब हम घर की मालिकी देते हैं तब उनका प्रभुत्व बढ़ता है, घर में उनकी एजेंसी बढ़ती है और ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं का सशक्तिकरण जितना बने इतना करे। तो ये अच्छी बात है प्रोग्राम में कि महिलाओं को सरकार प्राथमिकता दे रही है और सबसे ज्यादा तो वीडोज को और भी ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा ये जरूर से। इनके लिए उनकी घर में भी इनकी आवाज की कीमत ज्यादा होगी और लोग उनको इनका फैमिली नाम का जो फैमिली है वो भी उनको ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे।
1: डॉक्टर पारिक, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एक मांग आधारित योजना है और परियोजनाओं के प्रस्ताव जो हैं वो राज्यों से या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से आते हैं, तो ऐसे में क्या अलग अलग राज्यों के प्रशासन

0: प्रशासनिक क्षमता और शहरी नियोजन व्यवस्था के कारण योजना को कैसे मतलब चेंज किया जाता है कि किसी प्रदेश में इस तरह से आवास बनेंगे, दूसरे प्रदेश में दूसरी तरीके से बनेंगे, या फिर संख्याओं का जो वितरण होता है उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं?
1: हमारा जो राष्ट्र है इसमें राज्यों की सरकार को काफी स्वतंत्रता मिलती है, तो इसको साथ में ले जाना जरूरी है। मेरा ख्याल से ये प्रोग्राम ऐसा है कि इसमें सब राज्यों को भी ऐसा लगेगा कि हमारे हित में है, जो उनकी सरकार है उनको भी लगेगा, इससे हमारी फॉलोइंग बढ़ेगी। मेरा ख्याल से तो राज्यों को तो अलग अलग करना है, लेकिन राज्यों को बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर भी 1 डजन से हमारे यहाँ दरेक राज्य में अलग अलग सरकार है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ध्येय है, उसकी समझ नहीं आती है लोगों। और कभी कभी ऐसा एक लगता है कि ये तो अच्छी बात है, दूसरे को लगे कि इससे अच्छा दूसरा कोई है, तो इसमें ये प्रॉब्लम तो होने वाला ही है। बंधारण ने दिया हुआ प्रॉब्लम है, तो इसका कुछ हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन राज्यों के साथ बातचीत करके प्रोग्राम को मठारित कर सकते हैं कि कैसे करा जाए, कैसे दिया जाए, जितना बने इतना ज्यादा राज्य इसमें ना पूर्ण योगदान दे।
0: जी डॉक्टर पारेख, पिछले वर्ष के आंकड़ों की बात हम करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1,18,00,000 से अधिक मकान स्वीकृत हुए, जिसमें से करीब 88,00,000 से अधिक मकान पूरे हुए हैं और इनमें 8,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश हुआ था। तो अगर रोजगार के नजरिए से देखें तो इतने बड़े निर्माण कार्यक्रम का क्या महत्व है, और जाहिर सी बात है इसमें निर्माण सामग्री की भी काफी मांग होती है, तो स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ा और लोगों के लिए किस तरह रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए?
1: काफी लगता है, फिर भी हमको देश में कितना कंस्ट्रक्शन, कितना बांधकाम हो रहा है इसके हिसाब से इसको देना चाहिए। इससे सर्टनली थोड़ी बढ़त होती है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, सबसे ज्यादा अनस्किल लेबर को एम्प्लॉय करता है, तो इसीलिए ये प्रोग्राम से घर बांधने से सबका फायदा होता है, और खास करके वो अनस्किल लेबर हो उनका।
0: जी, और सरकार का लगातार लक्ष्य ये रहा है कि सरकार ने इन योजनाओं के साथ में जल जीवन मिशन को जोड़ा है, स्वच्छ भारत मिशन को जोड़ा है, सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो उसके लिए भी काम किए जा रहे हैं, बिजली जो पहले एक बड़ी समस्या मानी जाती थी आज उस दिशा में इतना काम हो रहा है कि घर पर ही लोग अपना सौर पैनल लगा करके अपनी बिजली बना सकते हैं और साथ ही अगर एक्स्ट्रा बिजली का उत्पादन होता है उसे बेच भी सकते हैं। तो इस तरह की जो योजनाओं के साथ तालमेल किया जा रहा है, इनसे नागरिकों के जीवन में कैसा बदलाव आ रहा है?
1: पहले हमने आवास योजना बनाई थी और आज की आवास योजना में ये जो बदलाव आया है अलग अलग प्रोग्राम का लिए, स्वच्छता मिशन, 95% से भी ज्यादा घरों में आजकल बिजली पहुंची है, तो
0: जी
1: इससे बहुत फर्क हुआ है। इसलिए लोगों का बस क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी अपेक्षाओं बढ़ गई है।
0: पारिक जी, सरकार की तरफ से जो सहायता प्रदान की जाती है उसमें सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाती है लोगों को, ताकि वो अपने खुद का मकान जल्दी से जल्दी बना सकें, तो लोग इन चीजों का फायदा कैसे उठा सकते हैं?
1: ये अलग चीज है कि बिल्कुल फ्री मकान देने की वजह सबको कहा है कि बस हम तो सब्सिडी देंगे, इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं, तो इससे क्या होता है कि लोग आसानी से थोड़ा लोन अपने आप लेते हैं और उसको फिर मेरा मकान है, मैंने इसका पैसा दिया है, इस भाव से उनकी आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ इवेल्युएशन भी बढ़ता है। मेरा ख्याल से काफी असर होती है सबके ऊपर। बट अच्छी बात यह है कि जो प्रोग्राम है इसमें फाइनेंशियल एड सबको मिलती है, लेकिन इसको थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ी हुई है, ये मेरा ख्याल से अच्छी चीज है। क्योंकि खाली पूरी फ्री बिल्डिंग देने से क्या होता है कि लोगों के बस सरकार पर निर्भरता बढ़ती जाती है, और इससे पोते अपने आप जो प्रयत्न करना चाहिए करने से कम होता है। ये अच्छी बात है कि सरकार सभी बहुत सी तरीके से मकान में सहाय देती है फाइनेंशियल, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि पूरा नहीं, ओनली पार्शियल है एड इज गिवन।
0: जी डॉक्टर पारी, के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, चर्चा करने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मेरा सौभाग्य आपने मुझे बुलाया है।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना से बदलती शहरी आवास की तस्वीर पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य किरीत एस पारेख। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: ध्यान।

0: कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
1: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09

0: आचार भारत ने कहा चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक, दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। पश्चिमी कोलंबिया में कल आए शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 200 से अधिक हुई। सीरियाई अदालत ने अपदस्थ पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई। और नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता की कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
1: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में पाकिस्तानी प्रशासन द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से विरोध प्रदर्शन शुरू होने वाले हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और POJK के लोगों के खिलाफ पाकिस्तानी प्रशासन द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। अवामी एक्शन कमेटी ने 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के दिन को काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। POJK में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोगों को घायल किया है। इस इलाके में लोगों के अगवा किए जाने की खबरों को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि कई देशों में पाकिस्तानी दूतावासों और राजनयिक मिशनों के बाहर प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया है।
2: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा भी की। उन्होंने कहा कि आज 11 अगस्त को बलूचिस्तान के लोग न केवल अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, बल्कि दुनिया से मांग करते हैं कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को कानूनी, राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक रूप से मान्यता दी जाए। पश्चिमी कोलंबिया में कल आए शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 200 से अधिक हो गई है। स्थानीय अधिकारियों के हवाले से मीडिया ने बताया कि 3000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है।

0: है क्योंकि कई लोगों के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोलंबिया में आए भूकंप से हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने संदेश में उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है। कोलंबिया ने आधिकारिक तौर पर सीरिया के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर इसराइल की संप्रभुता को मान्यता दे दी है। अमेरिका के बाद इसराइल में इस क्षेत्र के विलय को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला कोलंबिया एकमात्र अन्य देश बन गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और कई पूर्व अधिकारियों को सीरियाई अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराध, सुनियोजित हत्या और यातना सहित कई अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि न्यायाधीश फखर अल दीन अल आर्यन ने असद को देश के सर्वोच्च निर्णयकर्ता के रूप में सरकारी संस्थानों को हिंसा का आदेश देने के लिए दोषी ठहराया है। असद के चचेरे भाई अतेफ नजीब और कई अन्य पूर्व अधिकारियों को भी मौत की सजा सुनाई गई है। कांगो में इबोला महामारी से मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 4381 मामले दर्ज हुए हैं। 211 लोगों की मौत हो चुकी है और 704 मरीज अस्पताल और आइसोलेशन केंद्रों में हैं। स्वास्थ्य अधिकारी विद्रोही संघर्ष, खराब सड़क और भुगतान विवादों के चलते काम बंद होने के कारण महामारी से प्रभावित दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के तहत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। एक रिपोर्ट।
1: भारत और अमेरिका ने समझौते के अंतर्गत खुले वैज्ञानिक डेटा को साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। भारत अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक 5 और 6 अगस्त को बेंगलुरु स्थित इसरो के मुख्यालय में आयोजित की गई थी। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन और भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग को और मजबूत करने के महत्व को रेखांकित किया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस बैठक से भारत और अमेरिका की पहल ट्रस्ट के अंतर्गत नागरिक और वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा मिला है। दोनों पक्षों ने पिछले वर्ष नासा और इसरो के संयुक्त सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन की सफलता के बाद आपसी सहयोग बढ़ाने के साथ साथ भविष्य में विज्ञान और मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रौद्योगिकी सहयोग को भी आगे बढ़ाने पर चर्चा की थी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: चीन का संचार उपग्रह ले जाने वाले रॉकेट का लॉन्च नाकाम हो गया है। लॉन्च के फेल होने की वजह की जांच की जा रही है। लॉन्ग मार्च 7A रॉकेट पर चीन सेट 4B उपग्रह को देश के दक्षिणी द्वीप हैनान से लॉन्च किया गया था। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। पश्चिमी कोलंबिया में कल आए शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 200 से अधिक हुई। सीरियाई अदालत ने अपदस्थ पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई और नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Abhineet Shukla with The World News. The headlines.